0: कृष्ण हारी।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की

लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
4: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: गृह मंत्री अमित शाह

0: आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
3: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
4: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाश भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक

0: उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
1: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर स्वागत कर रही हूँ। मैं हूँ रोशनी और क्या खूबसूरत सा दिन है। एक नई नई सुबह की शुरुआत हुई है और आज है ईद अल अदा, तो आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखो, चांद की रोशनी जैसे हर अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में हमेशा उम्मीद और खुशियाँ बनी रहे, यही मुबारकबाद देते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज के कार्यक्रम में क्या होने वाला है, गुरुवार है, मस्त मुंबई कार्यक्रम में खास क्या होता है, तो आज 40 से लेकर 11 बजे तक मैं आपके साथ होने वाली हूँ। कुछ बहुत ही खूबसूरत इंसान और शख्सियत जो है उनके बारे में हम बातें करेंगे। उन्होंने अपने काम के ज़रिए बहुत कुछ हासिल किया है, हमें प्रेरणा दी है, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इतनी सारी खुशियां भर दी है हमारी ज़िंदगी में। उन्हीं से जुड़ी बातें आज के मस्त मुंबई कार्यक्रम में।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

खिलाड़ी फिल्म का बहुत ही मज़ेदार सा बेहतरीन सा गाना अभी हमने सुना और आज जो है मस्मम में ऐसे ही हम गाने सुनने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो आज के सितारे हैं बड़े कमाल के हैं और उन्हें हम जैसे ही स्क्रीन पर देखते हैं या बस उनका नाम भी ले लें अपने आप जो है हम हंसने लग जाते हैं। अब उनके बारे में जिनके बारे में आज हम बातें करने वाले हैं, क्या वो फिल्म के हीरो हैं? ना, पर क्या हम उनके लिए फिल्म देखने जाते हैं? तो हाँ, तो फिल्म की कहानी अच्छी हो या ना हो, इस एक्टर कॉमेडियन के चेहरे के एक्सप्रेशंस और उनके पंचस की वजह से जो है एंटरटेनमेंट की पूरी पूरी गारंटी होती है और उनके बस होने से ही चमत्कार सा हो जाता है स्क्रीन पर हर बार।

0: क्या बात है, गाने तो चल रहे हैं, उसी के साथ साथ कई सारे लिसनर्स जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, ईद अल अदा की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप सभी को इस त्यौहार की दिल से शुभकामनाएं और मुबारकबाद दे रहे हैं। और 9 बजने में बस 2 ही मिनट बाकी है, एक ज़रूरी बात जो है हम क्यों ना साथ मिलकर सुन ले, और उसके बाद 9 बजे के बाद कुछ खास होने वाला है और हमारे आज के सितारे के बारे में भी हम बातें करने वाले हैं। वैसे आपने पहचान लिया क्या कि हमारा आज का सितारा कौन है? बता दिया है कि उनकी वजह से चेहरे पर बस हंसी ही हंसी रहती है, उनके एक्सप्रेशंस, उनके डायलॉग्स, सब कुछ इतना बढ़िया है। उनकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई और आज वो फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, वो सारी बातें जानने के लिए बने रहो रोशनी के साथ 107.1 पर।
1: बाकी दादर स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर भेट होई ती पाय रस्त्यांचीच। रानडे मार्ग तर अस्तित्वातच नव्हता, टिळक पूल नुकताच तयार झाला होता, पण त्या परिसरात तोपर्यंत तुरळक लोकवस्तीच असल्यानं त्यावर रहदारी अशी ती नव्हतीच।
2: काठेवाडी वाघरी समाज आणि गोल्फा देवी यांचा नेमका संबंध शोधताना मिळालेली माहिती गोल्फा देवी म्हणजेच शाकंभरी आहे हे सिद्ध करणारी आहे।
3: काय ऐकली कधी तुम्ही ही कथा सात बेटांची।
4: श्रोते हो, नितीन साळुंखे यांच्या अज्ञात मुंबई या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन अवश्य ऐका दररोज सकाळी 8:15 107.1 FM रेनबो आणि सकाळी 9 वाजता अस्मिता वाहिनीसह न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर।

मस्त मुंबई कार्यक्रम में मैं रोशनी आप सभी का फिर एक बार स्वागत कर रही हूँ। विशेष कार्यक्रम हमने सुन लिया, कमर्शियल ब्रेक पर भी जा लिए और अब आज के सितारे के बारे में बातें करते हैं। वो एक ऐसी हस्ती है जो लोगों को हंसाती है, लेकिन शुरुआती दिनों में हंसी उनसे कोसों दूर थी। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ और फिर कुछ सालों बद माता पिता जो है मुंबई आ गए। पहले धारावी और फिर आगे के 10 साल जो है किंग सर्कल के झोपड़ी में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी और उनका यही कहना है कि इन्हीं हालातों की वजह से, इन्हीं गरीबी की वजह से डांस और कॉमेडी जो है उसका जन्म इनके अंदर हुआ। अब बचपन से ही इन्हें लोगों की नकल करना बहुत पसंद था और इस आदत के चलते आसपास के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लोगों से घिरे हुए रहते थे। धीरे धीरे 17 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज पर स्टैंडअप और मिमिक्री शुरू कर दी। अब देखो 17 साल की उम्र में इस बात की शुरुआत हुई और आज 68 साल की उम्र में वो मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई के प्रेसिडेंट है। आज उन्हीं के बारे में बातें हो रही है आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर।

0: एक गायिका जिनकी सोनी आवाज में है सुकून, जिन्होंने अपनी बेमिसाल गायकी के जरिए हासिल किया सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: आपकी आती रही।
0: उन्होंने संगीत सरिता कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं को आरडी बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं आशा भोसले हम नमस्कार कर रहे हैं।
0: छाया गांगुली जानी मानी गायिका छाया गांगुली से एक आत्मीय बातचीत।
3: 2, 3 और 4 जून 2026 को सुबह 10:02 पर सिर्फ FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: रात भर आपकी याद आती रही।
4: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
5: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
4: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
5: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
4: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

मस्तमुंबई कार्यक्रम है आज का सितारा, जिसके बारे में बातें हो रही है। 17 साल की उम्र में प्रोफेशनल स्टेज पर उन्होंने कदम रखा। 18 में उनके जो पिता जिस कंपनी में काम करते थे वहीं पर मजदूर के तौर पर इन्होंने भी काम करना शुरू किया और वही कंपनी का नाम जो है आगे चलकर उनका स्क्रीन नेम बन गया। अब वो कौन है उसके बारे में हमारे जो लिसनर पंकज महोदय हैं उन्होंने झट से शुरुआत में ही जान लिया है। बस इतना आसान सा ये क्लू है, इतनी आसान सी उनके बारे में जानकारी है, कोई भी जो है इनके फ़ैन है आसानी से पहचान लेगा। अभी भी वक्त है, जान लेते हैं, समझ लेते हैं कितने कितने उनके फैंस अभी FM रेनबो सुन रहे हैं और उनके बारे में हर एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

हमने जान लिया कि कैसे पहले आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ, फिर मुंबई आए, 17 साल की उम्र में स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू किया, 18 साल की उम्र में नौकरी पर भी लग गए। तो एक तरफ काम भी चल रहा था और धीरे धीरे जो है देश विदेश के शोज में वो परफॉर्म करने लगे। उसी दौरान स्वर्गीय एक्टर सुनील दत्त ने उनकी काबिलियत, उनका हुनर जो है वो पहचान लिया। 1980 में उन्हें अपना पहला ब्रेक मिला और फिल्म का नाम है ये रिश्ता ना टूटे। 80s और 90s के लगभग सभी फिल्मों में वो नजर आते थे और फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि फिल्म का जो असली हीरो है, मेन लीड, वो उनके होने से जो है उनके साथ स्क्रीन शेयर करने से डरने लगे। हर एक हीरो नहीं लेकिन कई हीरोज के साथ ऐसे हुआ। और ऐसे भी होता था कि कोई नया एक्टर है और उनके साथ वो सीन संभालने के लिए हमारे आज के सितारे को कास्ट किया जाता था।

इस फिल्म की इतनी जबरदस्त स्टार कास्ट, अजय देवगन, आमिर खान, काजोल, जूही चावला, दलीप ताहिल, ऐसे कई सारे दिग्गज कलाकार भी इस फिल्म में हैं, और जिस सितारे के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी इस फिल्म में हमने उन्हें देखा है, और ये जो गाना अभी हमने सुना शुरुआत में उनकी झलक भी देखी हुई है। अब शुरुआत उनकी हुई दर्द का रिश्ता फिल्म से, बाजीगर, दीवाना, मस्ताना, जलवा, तेजाब, करण अर्जुन, राजा हिंदुस्तानी, और अब कौन कौन से फिल्मों के नाम लो और किस किरदारों के बारे में बात करो, क्योंकि कुल मिलाकर 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है। 80s और 90s में जब काम शुरू किया तो लगभग हर दूसरी फिल्म में वो नज़र आते थे, और 2000 के बाद धीरे धीरे फिल्मों का जो काम है वो कम हुआ। उसके बावजूद सिर्फ 2000 साल में उन्होंने 25 फिल्मों में काम किया। बाबू भाई, छोटा छतरी, अलमेडा, असलम भाई, आय हाय, वो किरदार कैसे हम भूल सकते हैं। इन्हीं सारे नामों से भी हम उन्हें जानते हैं और वो हम सभी के चहेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जॉनी लिवर के बारे में, और देखो जैसे मैंने कहा हम सभी उनके फैंस हैं, हम सभी को उनके हर एक फिल्म के बारे में पता है, हर एक कैरेक्टर के बारे में पता है, और शायद इसी वजह से गायत्री शिंगवेकर और साथ प्रणव शिंदे है, और भी कई लिसनर्स ने गेस कर लिया है, जैसे कि नासिक से जयंत मोरे, मालेगांव से जो हमें सुन रहे हैं, ऐसे कई लिसनर्स ने गेस किया है। उनके बारे में और भी जानना है, और भी उनके बारे में आपको क्या पसंद है, वो सारी बातें होंगी रोशनी के साथ ओनली ऑन 107.1।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

पूछा गया था कि जॉनी लीवर का कौन सा डायलॉग उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, तब उन्होंने कहा था कि जॉनी भाई जब भी कुछ कहते हैं, सिर्फ स्क्रीन पर नहीं आमने सामने बैठते हुए भी, जब भी उनके साथ जो भी बातें होती है हमेशा हंसी आती है। तो यही सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ। और जैसे ही जॉनी लीवर पहचान लिया, हमारे कई सारे लिस्टर्स ने पहले से ही उनके जो फेवरेट डायलॉग्स हैं मुझ तक पहचान लिए, तो कौन सा फेवरेट डायलॉग है जॉनी लीवर का या फिर उनका कौन सा कैरेक्टर है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? और मैंने शुरुआत में ही कहा था ना, बस उन्हें देख लो, उनका नाम ले लो या उनके डायलॉग हम उनके अंदाज में नहीं कह सकते, बावजूद याद करके बहुत हंसी आती है।

कोई मिल गया फिल्म का गाना अदनान सामी और अलका याग्निक की आवाज़ों में। ये इस गाने का बहुत अलग वर्जन है और बहुत ज़रूरी था आज के कार्यक्रम में, क्योंकि आज के सितारे जिनके बारे में आज हम बातें कर रहे हैं वो वाकई उतने ही अलग, उतने ही हटके हैं। बात हो रही है जॉनी लिवर के बारे में, और जब पूछा गया कि उनका कौन सा किरदार और कौन से डायलॉग्स पसंद है, श्रेय राउत का कहना है कि उन्हें बाजीगर और कोई मिल गया फिल्म में जो जॉनी लिवर के कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और प्रणव शिंदे ने बाजीगर फिल्म का ही एक डायलॉग जो है वो लिखकर भेजा है, लेकिन वो पढ़ते हुए भी इतनी हंसी आ गई, हम सभी को पता है। तो प्रणव शिंदे ने लिखकर ये कहा है, अंजलि का फ़ोन था, आइसक्रीम खाना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ हमें बहुत अच्छे से याद है और बस वो याद करते हुए भी बहुत हंसी आ रही है। विजेंद्र खटोल, उनका कहना है दूल्हे राजा मूवी जो है उन्हें वो बहुत पसंद आती है। पंकज महोद भी जो है शुरुआत से लगे हुए हैं, उन्होंने आज का सितारा भी पहले ही गेस कर लिया, और डर फिल्म का डायलॉग उन्हें बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर जॉनी लिवर का किरदार ऐसा कहते हैं कि मैं साबित कर सकता हूँ कि आपके हाथ में 11 उंगलियाँ हैं, और हमसे ना हो पाएगा, वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब्बा डब्बा जब्बा ये जुदाई फिल्म का है, इसके बारे में चेतन कुमार जो है वो कह रहे हैं, तो कई सारे जॉनी लिवर के फैंस जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं के बारे में आज के मस्त मुंबई कार्यक्रम में बातें कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, थोड़ा सा ही वक्त हमारे पास है। जल्दी जल्दी एक गाना उन्हीं की फिल्म का और उसके बाद उन्हीं से जुड़ी और कुछ बस थोड़ी सी बातें करने का वक्त है हमारे पास, तो वो थोड़ी सी बातें करने के लिए यहीं पर लौट कर आना है, जो है आपका अपना आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

हम बेफिक्र इसलिए चलते रहे आज के मस्तमुंबई कार्यक्रम में, क्योंकि ऐसी हस्ती के बारे में हमने बातें की जिन्होंने हमें खूब हंसाया है, और वो है जॉन राव, यानी जॉनी लीवर। अगर उनकी ज़िंदगी की कहानी के बारे में जाने तो वो किसी भी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक वक्त ऐसा था जब एसटी बस की टिकट के पैसे बचाने के लिए वो काफ़ी जद्दोजहद करते थे, और वहीं फिर आगे चलकर उन्होंने दिग्गजों के साथ काम किया। हवाई जहाज़ से सफ़र करते हुए वर्ल्ड टूर वो दुनिया भर में कर रहे थे। सबसे अच्छी बात यह है कि उनके क्लीन और इनोसेंट ह्यूमर से उन्होंने हर एक ऑडियंस का दिल जीता है। अब ऑडियंस के तौर पर तो हमें इतना ही पता है उनके काम के बारे में, लेकिन जितने सारे आर्टिस्ट ने उनके साथ काम किया है वो कितने अच्छे इंसान हैं ये कहते हुए भी कभी नहीं थकते। तो सलाम उस इंसान को और शुक्रिया उस सितारे को जिन्होंने हमें हमेशा सिर्फ हंसाया है, आज भी हंसा रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है इटर्निटी के लिए जब भी हम जॉनी लीवर का नाम लेंगे चेहरे पर मुस्कुराहट हंसी अपने आप आ जाएगी। इसी के साथ मस्त मुंबई कार्यक्रम पूरा होता है। कुछ ही पलों में मैं मिलती हूँ, यानी रोशनी आपको मिलेगी समाचारों के साथ।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं और अब जानते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। ईद अल अज़ा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरी ईद भी कहा जाता है।

श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ईद की मुख्य नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की जा रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। अमरीकी सेना ने होमुर्ज जलडमरू मध्य के निकट दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास शहर में ईरानी सैन्य ठिकाने पर हमले किए हैं और 4 ईरानी हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान की मीडिया ने शहर के पूर्व में विस्फोटों की खबर दी। हालांकि ईरान के अधिकारियों ने कहा कि हमलों से कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ। और समाचारों के अंत में, आईपीएल क्रिकेट में कल एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। अब राजस्थान रॉयल्स का शुक्रवार को क्वालिफाइनल 2 मुकाबले में गुजरात टाइटंस से सामना होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम रविवार को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु में खेलेगी। इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। आने वाले कार्यक्रम के लिए बने रहो आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो सेवा पर।

रुपया रुपया रुपया करते करते कई बार हमने अपने आप को भी अनदेखा और हमारी कुदरत हमारे पर्यावरण की तरफ भी बिल्कुल भी उनकी परवाह नहीं की, उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। और ऐसा करते करते आजकल बीच बीच में उन्हीं का रौद्र अवतार जो है हमें देखने मिलता है और फिर अब हम सोच रहे हैं कि हम उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। छोटे पैमाने पर हम सभी कुछ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप ऐसे किसी को जानते हो जिन्होंने बड़े स्तर पर पर्यावरण और पशुओं की रक्षा की है, उनकी सुरक्षा की है और उनकी देखरेख के लिए काफ़ी कुछ कर दिखाया है? और ऐसी बातें जिसे सुनकर हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिले, उन्हीं के बारे में आज के नमस्ते भारत में हम बातें करेंगे। रोशनी आज आपको कहानियाँ सुनती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

क्या करें क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हम बस यही सोच रहे हैं वहाँ पर कई सारे लोगों ने बस अपने आप 100 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं और उनकी बच्चों की तरह वो परवाह कर रहे हैं। किसी ने पूरे गांव को एनिमल शेल्टर होम में तब्दील किया है, तो उसी के साथ साथ हम कितने सारी खबरों में सुनते हैं पढ़ते हैं कि लोग बीच क्लीनिंग ड्राइव कर रहे हैं, नो टू प्लास्टिक कह रहे हैं, 24/7 जो है सोलार विलेज, ऐसे कई सारे विकल्प, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रास्ते जो है लोगों ने चुने हैं क्योंकि उन्हें पर्यावरण की बहुत ज़्यादा फिक्र है। तो इस तरह से कुदरत की, पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकती है। पंछियों के लिए, पशुओं के लिए हमें अगर कुछ करना है तो ये सारे विकल्प हैं, हमें पता है, लेकिन क्या फिल्म मेकिंग भी ये सब कुछ करने के लिए एक बहुत अच्छा पर्याय है? क्या उसके माध्यम से भी हम कुदरत को, हमारी पृथ्वी को कुछ दे सकते हैं?

0: एक गायिका जिनकी सूंधी आवाज में है सुकून, जिन्होंने अपनी बेमिसाल गायकी के जरिए हासिल किया सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: आपकी याद आती रही।
0: उन्होंने संगीत सरिता कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं को आर डी बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं आशा भोसले, हम नमस्कार कर रहे हैं।
0: छाया गांगुली जानी मानी गायिका छाया गांगुली से एक आत्मीय बातचीत।
3: 2, 3 और 4 जून 2026 को सुबह 10:02 पर सिर्फ FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: रात भर आपकी याद आती रही।
4: बाकी दादर स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर भेट होई ती पाय रस्त्यांचीच। रानडे मार्ग तर अस्तित्वातच नव्हता। टिळक पूल नुकताच तयार झाला होता, पण त्या परिसरात तोपर्यंत तुरळक लोकवस्तीच असल्यानं त्यावर रहदारी अशी ती नव्हतीच।
5: काठेवाडी वाघरी समाज आणि गोल्फा देवी ह्यांचा नेमका संबंध शोधताना मिळालेली माहिती गोल्फा देवी म्हणजेच शाकंभरी आहे हे सिद्ध करणारी आहे।
6: काय ऐकली कधी तुम्ही ही कथा सात बेटांची।
5: श्रोतेहो नितीन साळुंखे यांच्या अज्ञात मुंबई या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन अवश्य ऐका दररोज सकाळी 8:15 107.1 FM रेनबो आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीसह न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍपवर।
6: चला उलगडू आजही विस्मय गाथा।
7: Cosmos Digital Banking सेवा आसान और सुरक्षित।
8: इंटरनेट बैंकिंग,
7: मोबाइल बैंकिंग,
8: व्हाट्सएप बैंकिंग,
7: EKYC,
8: NEFT, RTGS,
7: IMPS,
8: Cosmos रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
7: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट Cosmos बैंक में जरूर होना चाहिए।
8: Cosmos Cooperative Bank, Enriching Life।
9: वेलकम बैक। FM रेनबो पर कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत, रोशनी आपके साथ है। और जब पर्यावरण से जुड़ी बातें हो रही है तब ये भी समझ में आ गया है, ये पता चला है, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ ज़रूर शेयर कर लूं कि पूरी दुनिया में 100 से भी ज़्यादा फिल्म मेकर्स हैं जो अपने काम से पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है हमारे देश के माइक पांडे। ये वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है और माइक पांडे ने 300 से भी ज़्यादा जो है अवार्ड जीते हैं अपने काम के लिए। 3 ग्रीन ऑस्कर अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स हैं लेकिन ये खास है, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। पशुओं के प्रति असीम लगाव के चलते पक्षी महोत्सव के माइक पांडे ब्रांड एम्बेसडर भी है, तो इनके बारे में हम और भी जानेंगे। नमस्ते भारत में कहानियाँ सुनती है और आज कहानी है माइक पांडे की।

इंडिया में जन्मे माइक पांडे को बचपन से ही तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। जानवरों से भी बड़ा प्रेम था। घर के पास के जो जानवर थे वो उनकी तस्वीरें खींचते थे और घर आकर उससे जुड़ी पूरी कहानी बताते हुए घर वालों को वो सारे फोटो दिखाते थे। बचपन की ये आदत जो है वो आगे चलकर जिंदगी का मकसद हो गई और अब अपने फिल्मों के माध्यम से वो पक्षी प्राणी पर्यावरण की सुरक्षा कैसी करनी है इसकी जागरूकता बढ़ा रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं।

0: श्रोतेहो, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या सुप्रसिद्ध गायिका छाया गांगुली आपल्या भेटीला येणार आहे. विशेष म्हणजे छाया जी आकाशवाणी परिवाराच्या सदस्य आहे.
1: उस दिन सारा दफ्तर फूलों के गुलदस्तों से महक रहा था.
2: वाह,
1: पुरस्कार समारोह के लिए जयदू जी मुझे अपने साथ दिल्ली ले गए थे. इस अवसर पर मेरे माँ बाबा भी उपस्थित थे.
0: छाया गांगुली यांचा सुरेल प्रवास आणि आकाशवाणीच्या आठवणी उलगडणारी त्यांची युनुस खान यांनी घेतलेली दीर्घ मुलाखत दिनांक 2, 3 आणि 4 जून रोजी सकाळी 10:02 अवश्य ऐका FM रेनबो आणि न्यूज ऑन AIR ऍप वर. आपकी याद आती रही,
3: आती रही रात भर.
4: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
5: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध.
4: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू. शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें.
5: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.
6: गाने चल रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक भी हो गया है. नमस्ते भारत में रोशनी अभी भी आपके साथ है और कहानियां सुनती है. कहानी है माइक पांडे की, कैसे बचपन का शौक जो है जिंदगी में एक बहुत अच्छा मकसद बन गया और फिर हुआ यूं कि 2000 में वेल्स के संरक्षण के उद्देश्य से उन्होंने एक फिल्म बनाई और उसका असर ऐसा हुआ कि हमारे पूरे देश में वेल्स कंजर्वेशन का मुहिम शुरू हो गया. इसी तरह जब टाइम्स ट्रैवलर, वैनिशिंग वल्चर, ब्रोकन विंग्स इन सभी फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनी, उसका असर असल जिंदगी में भी देखा गया. तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो पर्यावरण की, पशुओं की इतनी परवाह करते हैं, उनसे इतना प्रेम करते हैं कि वाकई वो जिंदगी में उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और उसका असर हमें आसपास हर तरफ नजर आ रहा है.

धरती, पशु, प्राणी, हमारा पर्यावरण, इसके लिए अपनी फिल्म मेकिंग और डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से जो काम कर रहे हैं माइक पांडे, उनकी आज हमने कहानी सुनी नमस्ते भारत कार्यक्रम में। और ईद के मौके पर जब सुबह सुबह मुलाकात हुई तब हमने मस्त मुंबई में जॉनी लीवर से जुड़ी बहुत कुछ बातें जो है एक दूसरे के साथ शेयर की, तो दिन की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन आज की आपकी और मेरी मुलाकात जो है यहीं पर पूरी हो रही है। पता है बाहर बहुत धूप है, इसलिए जाते जाते एक प्यार भरी सलाह यही देना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे जो बड़े समारोह या फिर खेल प्रतियोगिताओं के दौरान बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें बस यही कहना है कि भीड़ भाड़ के कारण गर्मी से संबंधित बीमारियाँ का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। शारीरिक मेहनत, सीधी धूप और पानी की कमी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और प्रतिभागियों को पर्याप्त पानी पीना चाहिए और लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। तो अपने आप की तरफ ध्यान दो, हो सके तो 11 और 4 के बीच घर से बाहर ना निकलो। और घर से बाहर क्यों निकलना है, अपने घर पे ही बने रहो, ऑफिस में हो तो वहीं पर रहो, और सब कुछ करते हुए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल जरूर सुनना। इसी नोट पर रोशनी आज के लिए आपको टाटा गुड बाय कह रही है, और आपकी और मेरी मुलाकात अब कब होगी, अगले महीने। तब तक सुनते रहो 107.1।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। मैं हूं आरजे स्वेच्छा। इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के अंदर किसी भी अवैध निर्माण की कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में अमित शाह ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से

भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई है। बातें खेल जगत की। फ्रेंच ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच ने कड़े मुकाबले में तीसरे दौर में जगह बना ली है। 39 वर्षीय जोकोविच को फ्रांस के 74वीं रैंक के खिलाड़ी वैलेंटिन रॉयर ने 3 घंटे से अधिक समय तक कड़ी चुनौती दी, लेकिन अंत में जोकोविच ने 6-3, 6-2, 6-7 और 6-3 से जीत दर्ज की। धन्यवाद।

0: हाय हेलो, सत श्री अकाल, वणक्कम। मैं हूँ आरजे नमिता, आपके साथ करने आई हूँ दिल की बात। और कहते हैं, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। क्या बोलती हूँ, स्वेच्छा भी हमारे साथ हैं और आरजे स्वेच्छा से आपकी मुलाकात करवा देती हूँ।
1: हेलो हाय, मैं हूँ आरजे स्वेच्छा। और कितनी खूबसूरत बात के साथ शुरुआत की है नमिता आपने, मजा आ गया।
0: क्या बात है, थैंक यू। लेकिन सच बोले ना, कई बार हम सिर्फ मिसाल बनने के लिए या दूसरों को ये साबित करने के लिए कि हम कितने बेहतर हैं, कितने अच्छे हैं, उनकी तारीफें हमें इतना मैटर करने लगती हैं कि हम असली जो लक्ष्य होता है उससे भटक जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, खुद की बात सुनना बंद कर देते हैं और दूसरी बातों पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं जो हमें सुनाई देती हैं, बस उन्हीं को सुनते हैं और अपने अंदर की जो आवाज़ है उसको कहीं ना कहीं हम भूलने लगते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा खुद का क्या परसेप्शन है ना किसी भी बात को लेके, वो हम सेकेंडरी करके फाइनल अप्रूवल दूसरे से चाहते हैं कि वो बताए कि हम कैसे हैं। आज मैं तैयार हुई हूँ तो आज मुझे स्वेच्छा बताएगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, अदरवाइज मैंने तो अपने आप को शक्ल देखी नहीं होगी आईने में। हमारा जो खुद का वो होता है अप्रूवल, उसको हम माइंड ही नहीं करते, हम तो दूसरों के अप्रूवल पर ही डिपेंड करते हैं।
1: बिल्कुल, कि अब छोटी छोटी चीज़ों में भी, बड़े डिसीजन तो ठीक है हम एडवाइस लेना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन किसी से अप्रूवल या किसी के वैलिडेशन पे डिपेंड हो जाना ये अलग बात है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने जो पहना है वो ठीक है, कहीं मैं बोरिंग तो नहीं या कहीं मैं ओवर फ्रेंडली तो नहीं, यू नो
0: मीन्स ले देखे बोल सकते हैं कि अपने ऊपर डाउट होने लगता है हमें, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं खड़े होते, हम सोचते रहते हैं सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा होगा। हम वो पहले से जानना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम बन भी जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स ना रस्ते में ही देखने को मिल जाते हैं। कई लोग यंग दिखने की चाह में कुछ ऐसे उल जलूल से कपड़े पहन लेंगे जिससे आपको लगेगा कि वो उनके ऊपर, वो उसमें कंफर्टेबल भी नहीं है ये भी पता चलेगा, बट वो स्टिल क्योंकि दूसरों से उन्हें वो सुनना है कि सो ये चीजें करने पर मजबूर कर देती है। तो इसको कैसे ब्रेक करें, ये ब्रेक फ्री में जानेंगे नमिता और स्वेच्छा के साथ। बने रहिए यहीं FM रेनबो पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: हाँ जी, कुछ लोग ऐसे ही घर कर लेते हैं आपके दिल में, और इसीलिए ये गाने की जो फर्स्ट लाइन है हमने आपको सुनवाई, क्योंकि कुछ लोगों पे हमारी ऐसी डिपेंडेंसी होती है कि वो जो कहें हम उसी को परफेक्ट मान लेते हैं, सही मान लेते हैं, उनकी एडवाइस यानी कि पत्थर की लकीर।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और स्वेच्छा, तुम्हारे घर में कोई ऐसा है मेंबर जिसकी हर बात मानना ही है और उनके कहे बगैर घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता?
1: वैसे ऐसा तो नहीं है कि मेरे परिवार में ऐसा कोई हो कि जिसकी बिल्कुल

0: सुन्नी है या जो कोई ज़बरदस्ती अपने फैसले थोपता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बाकी जो आसपास जो बाहर के लोग हैं, जो फैमिली है, कुछ अलग तरीके के लोग हैं आसपास के, वो ज़रूर अलग अलग तरह की सलाहें देते रहते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले मैं खुद की सुनना पसंद करती हूँ कि मुझे जी, पता जी. है कि मुझसे बेहतर मेरे लिए फैसला और कौन ले सकता है, मैं ही तो ले सकती हूँ।
1: बिल्कुल, हमें ये पता होते हुए भी कई बार हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमें एडवाइस करते हैं और इस कदर करते हैं कि ऐसा लगता है यार इनको सब पता है, हमें कुछ पता ही नहीं। अभी कुछ कोर्सेज की ही बात कर लो, पढ़ाई के लिए ही बात कर लो, तो जब भी हम यूनिवर्सिटीज़ के तरफ देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा फलाना करियर अच्छा है या हम किस फील्ड को चूज़ करें, तो अचानक से सलाह के जो क्या बोलेंगे पोटलियाँ होती हैं वो आके हमारे सर पे गिर जाती हैं और फिर हम होते रहते हैं कन्फ्यूज।
0: हाँ, ऐसा होता भी है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं कुछ करना चाह रही थी तो मेरी पूरी रिसर्च भी थी उस पर, लेकिन उसके बाद भी मुझे एडवाइसेज आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उनने ये सब पहले पढ़ रखा हो, उस तरीके से मुझे एडवाइस मिल रही थी लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। तो एडवाइस से हमेशा काम नहीं चलता, एडवाइस ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी आवाज से ज्यादा दूसरों की एडवाइस सुनने लगते हैं।
1: एग्जैक्टली,
0: और फिर धीरे धीरे हम डिसीजन नहीं लेते, बस अप्रूवल लेना सीख जाते हैं
1: एक्चुअली। और होता क्या है, ठीक है, हमें जितना नॉलेज है हम उस अकॉर्डिंगली सलाह देंगे दूसरे को, उसमें हम बहुत पीछे भी हो सकते हैं, बहुत आगे भी हो सकते हैं, पर सुनने वाले को ये डिसाइड करना कि कौन बेहतर है, क्या सलाह देने वाला क्या किस मुकाम पर है, वो जो सलाह दे रहा है उसका क्राइटेरिया, वो समझ पाना भी मुश्किल बात होती है। उस समय ऐसा लगता है कि ये हमारे फेवर में बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसी सलाहों पर चलकर हम जो है गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और फिर हमको यू टर्न लेना पड़ता है,
0: परेशानी।
1: फिलहाल हम भी यू टर्न लेते हैं और के और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में सुनते हैं ये नगमा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: EKYC,
2: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
2: कॉस्मोस रूपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: UPI जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: ऑफ कोर्स म्यूजिकल योर्स एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे नमिता और आरजे स्विच आपके साथ हैं और बातें हो रही हैं ब्रेक फ्री में इस वैलिडेशन पर जो हम दूसरों के लिए रख कर बैठे हैं, सजा कर थाली में बैठे हैं कि आप बोलेंगे तो खाएंगे भाई साहब। फिलहाल जब भी बात होती है कि कोई और हमारे लिए डिसाइड करता है तो उसमें ऐसा नहीं कि हर बार मिस्टेक ही होती है, कई बार हमारे बहुत अच्छे शुभचिंतक जो हमें बाहर से देख रहे होते हैं वो जज भी कर लेते हैं कि इसके लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी, है ना। वो हमको हमसे ज़्यादा जानते हैं और मोस्टली वो पेरेंट्स ही होते हैं जो हमें पालते पोसते हैं, वही होते हैं। तो इस तरीके से कहा जाए तो वैलिडेशन की ज़रूरत तो है, लेकिन किनकी है हमें वो छाटना ज़रूरी है।
4: सबकी नहीं, कुछ लोगों की।
3: बिल्कुल बिल्कुल। और सोशल मीडिया के इस ज़माने में ना हम वो वैलिडेशन कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं ये तो स्वेच्छा ही बताएंगी आपको।
4: सोशल मीडिया के ज़माने में नमिता लोग इतने मतलब जितना ज्यादा सोशल मीडिया फायदेमंद भी है बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन उतना ही लोग खुद को खुद के लिए नुकसानदायक भी बना लिया है लोगों ने। क्योंकि इतना ज्यादा लाइक लोगों को छोटी छोटी बातों पे इतना कॉन्शियस रहते हैं, जैसे उन्होंने कोई पिक अपलोड किया तो उसपे यदि लाइक्स नहीं आ रहे हैं या उसपे कोई कमेंट नहीं कर रहा है या किसी ने सीन करके छोड़ दी है स्टोरी बिना कुछ बोले या कि अच्छे लग रहे, बस लोग पैनिक हो जाते हैं कि कुछ तो कमी है। कुछ तो
3: और कुछ एक बातें ऐसी होती है उससे हम ना उनका ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि शायद वो हमें पसंद ही नहीं करते, इसीलिए हर बार मुझे इग्नोर किया जा रहा है।
4: बिल्कुल।
3: तो ऑनलाइन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर्सन रीचेबल नहीं होता, उस तक पोस्ट नहीं पहुंची होती या फिर वो रैंडम कहीं निकल गई है, उसके सामने नहीं पड़ी, तो इतनी जल्दी हम उसमें जजमेंटल हो जाते हैं। और क्योंकि इस वक्त पे इन सब का बहुत महत्व है और यंग जनरेशन की बात करें, जेंजीज की बात करें, तो वो उसी में रह रहे हैं, उनको उन्होंने रियल लाइफ में और सोशल मीडिया की लाइफ में कोई डिफ्रेंशिएट समझना ऑलमोस्ट बंद किया है। तो ज़रूरी यह है कि हमेशा याद रखें कि जो रियल लाइफ है वो इस लाइफ से बहुत डिफरेंट है और वहाँ वैलिडेशन की ज़रूरत तब नहीं होगी जब आप खुद को खुद के सामने साबित कर चुके होंगे, तो किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी एक्चुअली।
4: हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं?
3: फिर चाहे तू मेरे सामने हो या ना हो, है कि नहीं। उदित नारायण की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये वाला नगमा FM रेनबो पर।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: ऑफ कोर्स म्यूजिकली योर्स FM रेनबो पर आप ब्रेक फ्री प्रोग्राम सुन रहे हैं नमिता और स्वेच्छा के साथ, और बात हो रही है वैलिडेशन की। कभी ना कभी वैलिडेशन सिर्फ लुक्स या सोशल मीडिया का नहीं होता, लाइफ के डिसीजंस का भी हो जाता है। जॉब चेंज, सही है ना, शादी करनी चाहिए या नहीं, और भी बहुत सारी बातें। लेकिन सच बात तो ये है कि कई बार हमें आंसर पता भी होता है, लेकिन डर ये होता है कि कहीं दूसरों ने अप्रूव नहीं किया तो। क्या कहती है सोचा?
6: बिल्कुल सही बात है। उसी डर से कितने डिसीजन तो दिमाग में सोच के खत्म कर देते हैं, कितनी बातें तो कि ये करना, ये बाहर आई और पक्का इस बात पे अप्रूवल नहीं मिलना, और डर की वजह से वो बात रह जाती है कहीं ना कहीं अंदर। लेकिन जब हमें पता ही है कहीं ना कहीं, तो मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा सब आपका सपोर्ट ही करें, सब क्लैप करें। बस कभी कभी ये होता है कि जब आपको ना जो करना है, आपने जो सोच लिया था, आपको कर देना चाहिए। किसी के अप्रूवल या किसी के बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है।
5: बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि बात की कि शादी की बात हो या जॉब चेंज की बात हो, इनमें ना हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जब हम कंफ्यूज रहते हैं तो एडवाइस लेने जाते हैं, लेकिन हम एडवाइस अगर बार बार सुनते हैं कि ये भी वही बोल रहा है, वो भी वही बोल रहा है, तो हम उस ओर हो जाते हैं। जबकि हमारे प्लस और माइनस हमको पता होते हैं, उसके बाद भी हमसे डिसीजन लेने में कई बार गलतियां हो जाती हैं। और जब भी कहें कि वैलिडेशन की बात है तो अप्रिशिएशन ही मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ना बड़ा साइलेंट सा वैलिडेशन होता है, यानी कई बार लोग वो खुद भी फाइनल नहीं होते हैं कि इन्हें क्या आंसर करें, तो ऐसे बीच का एक चीज़ होती है, एक हामी होती है जो वो दे देते हैं कि हाँ करके देखो वाली बात, ऐसा। तो इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और क्योंकि ये कई बार ये आपको वो रास्ते खोल के दे देती हैं

0: जिन पे आप चले भी नहीं होते और दूसरे किसी को चलते हुए भी नहीं देखते, और पहुंच जाते ऐसे मुकाम पर जहां पर आप अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कमा भी सकते हैं, नेम फेम सब कुछ होता है, मनी होता है। तो इमोशंस पर कंट्रोल करके जो है ना, वैलिडेशन को आप उसके ऊपर कोप अप हो सकते हैं, आप अपने इमोशंस पर ना जाएं, और प्रैक्टिकली अगर बातों को देखें तो हमेशा आपको एक बहुत खूबसूरत सा रास्ता जो है वो दिखाई देगा।
1: बिल्कुल, क्यों ही अपने इमोशंस का, लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी को देना है।
0: बिल्कुल,
1: अपने हाथ में रखिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, अपने डिसीजन लीजिए और अपने लिए बेस्ट सोचिए।
0: बिल्कुल, कोई कहे कहता रहे हमको क्या करना है। ये गाना भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, सुनते रहिए FM Rainbow।

ना मिलो किसी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मिलना जुलना तो पड़ता ही है, और वैलिडेशन के लिए किसी का मुंह ना देखें, यही हमारी इस सेगमेंट का कहना है और इस बात का कहना है कि आप ब्रेक फ्री हो जाएं इस वैलिडेशन के फेस से। बने रहिए यहीं एफएम रेनबो के साथ, कुछ ही देर में समाचार होंगे और समाचारों के उस पार म्यूजिक कैफे कर रहा है आपका इंतज़ार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे. मैं हूँ आरजी नमिता. लीजिए, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार. भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति और स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है. दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की. यह बैठक कल पेंचिंग में हुई. अमेरिकी सेना ने हुमुर्ज जलडमरू मध्य के निकट दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास शहर में ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं. अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसके बलों ने 4 ईरानी हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं. अमेरिका ने कहा है कि ये ड्रोन जलडमरू मध्य के आसपास खतरा पैदा कर रहे थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया. श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी. महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री जयंत पाटिल ने राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट तथा अधिभार तत्काल वापस लेने की मांग की है. उन्होंने दावा किया है कि इससे ईंधन की कीमतें कम होंगी और बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को राहत मिलेगी. समाचारों के अंत में, दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में आज सुबह 5 मंजिला आवासीय इमारत में आग लगने से एक महिला मामूली रूप से झुलस गई. नगर निगम के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. आग पर सुबह 8:15 बजे तक काबू पा लिया गया. आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है. म्यूजिकल यूर्स एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे नमिता और स्विच आपके साथ हैं. और पहला गाना म्यूजिक कैफे का आप तक पहुंच रहा है. सुनते रहिए एफएम रेनबो.

0: एक बार फिर आपका स्वागत है एफएम रेनबो पर. मैं हूं नमिता आपके साथ. और कहते हैं दोस्तों, किताबों के पन्नों से लेकर बॉलीवुड के पर्दे तक कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती.
1: हाँ बिल्कुल. और जब उन कहानियों में संगीत का जादू जुड़ जाए तो वो सिर्फ फिल्म नहीं, एक एहसास बन जाती है.
0: जी हाँ, मैं हूं नमिता, साथ में है स्वेच्छा. हम बात करेंगे आज म्यूजिक कैफे में

0: किस बारे में? किताबों के बारे में, उन किताबों के बारे में जिन पर बनी है फिल्में, और बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी है लेकिन उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी होंगी, है कि नहीं?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो किताबें पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो गाना भी है बाजीगर में ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। वैसे थोड़ा ये और थोड़ा वो कहते हैं ना, वो कौन सी फिल्म का डायलॉग है कि जो दृश्यम, दृश्यम का डायलॉग है आई थिंक, कि जब हम कुछ देखते हैं तो वो हमारे मन पर जो है वो पिक्चराइज हो जाता है, वो छप जाता है, उसको हम ट्रू मानते हैं, सच मानने लगते हैं। तो वैसे ही ना, किताब पढ़ के उतना वो मजा नहीं आता है, या तो वो वैलिडेशन ही नहीं मिलता जो कि मूवीज देखकर हमें मिल जाता है। सो ऐसी एक फिल्म जिसका ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और बात करेंगे फिल्म के बारे में इस गाने के उस पार, बने रहिए एफएम रेनबो पर नमिता और स्वेच्छा के साथ।

0: एक गायिका जिनकी सोनी आवाज में है सुकून, जिन्होंने अपनी बेमिसाल गायकी के जरिए हासिल किया सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: आपकी आती रही।
0: उन्होंने संगीत सरिता कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं को आरडी बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं आशा भोसले हम नमस्कार कर रहे हैं।
0: छाया गांगुली जानी मानी गायिका छाया गांगुली से एक आत्मीय बातचीत।
3: 2, 3 और 4 जून 2026 को सुबह 10:02 पर सिर्फ FM रेनबो 107.1 मेगा

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: स्वेच्छा और आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे 107.1 एफएम रेनबो पर। मैं हूँ नमिता के साथ
2: और हम जो बातचीत कर रहे थे म्यूजिक कैफे में, हम किताबों की बात कर रहे थे, किताबों पर आधारित फिल्मों की बात कर रहे थे और ये जो गाना अभी आपको सुनवाया, सिलसिला ये चाहत का, देवदास फिल्म का ये गाना था। बेहद खूबसूरत गाना है और उतनी ही खूबसूरत फिल्म है।
1: हाँ बिल्कुल नमिता, मोहब्बत अगर दर्द बन जाए तो उसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है देवदास।
2: बिल्कुल, जो बनी थी देवदास नाम के लड़के पर, एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार था मगर मुकम्मल नहीं हुआ, इश्क पर जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। बने रहिए यहीं एफएम रेनबो पर, इस बारे में और भी चर्चा होगी मेरे यानी नमिता और स्वेच्छा के साथ।

0: वेलकम बैक म्यूजिक कैफे, आप सुन रहे हैं, मैं हूँ आरजी नमिता, स्वेच्छा मेरे साथ हैं और हम बातें कर रहे हैं उन किताबों की जिन पर आधारित हैं कुछ फिल्में, और उनमें से एक देवदास की हमने बात की। अच्छा स्वेच्छा, तुम्हें पता है दो देवदास थी, एक ओल्ड देवदास भी थी, उसकी भी स्टोरी तो ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम है क्योंकि वो एक ही सिंगल बुक पर आधारित है। मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी भी बनाएंगे स्टोरी लाइन वही रहेगी, लेकिन किताब पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होता है। जिनको आता है किताबें पढ़ना और जो शौक रखते हैं किताबों का, वो जानते हैं कि उसमें से एक अलग ही फ्लेवर निकल के आता है।
1: बिल्कुल। और कई बार मूवी में हमको कहानी को छोटा करके भी दिखाना पड़ता है,
0: बिल्कुल,
1: समय
0: बिल्कुल।
1: की जो पाबंदी है उसकी वजह से।
0: हाँ,
1: पर किताबें जो है आपको उस कैरेक्टर का, उसकी लाइफ का पूरा विश्लेषण
0: देती
1: हैं, पूरा बता देती हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो किताबों का अपना अलग ही मजा है।
0: बिल्कुल। पता है बीच में क्या हो रहा था, न्यूज़पेपर वाले ने आना बंद कर दिया था हमारे घर किसी रीज़न से, उसको दोबारा स्टार्ट नहीं करवा पा रहे थे और हम कहीं बाहर गए थे, तो उस बीच में कुछ ऐसी मिसकम्युनिकेशन हुआ और वो नहीं आया। तो एक हफ्ते बिना न्यूज़पेपर के जब हम न्यूज़ अपने मोबाइल पे पढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो वो जो हमने मिस किया, यानी शब्दों का हमारे अंदर जो ठहराव होता है वो एक अलग ही होता है, एक टेस्ट होता है उसका। और चाय के साथ जो उसकी लेते लेते जो हम अखबार पढ़ते हैं उसकी कोई बात ही अलग है। फिर चाहे हम मोबाइल पे वही अक्षर क्यों ना पढ़ रहे हों, लेकिन मज़ा नहीं आता। तो किताबों का भी कुछ ऐसा ही रोल होता है, जिनको शौक होता है वो किताबों के एकदम कीड़ा बन जाते हैं, वो उसी में चिपक के रहना चाहते हैं, उनको वो टेस्ट हमेशा ही चाहिए होता है, और इसलिए उसके पढ़ने वाले कभी बंद नहीं होते। इतनी लाइब्रेरीज, इतनी सारी चीज़ें इसीलिए ओपन हैं क्योंकि आज भी पाठक वर्ग जो है हमारे यहाँ बहुत अच्छा खासा है। मतलब फिर भी एक बार कहा जाए तो मूवी थिएटर्स में वो भीड़ नहीं होती है जो किताबों की फेयर, बुक फेयर अगर आप कभी गए हों तो देखने को मिलेगी। अच्छा, हर उम्र के लिए वहाँ पर अवेलेबल होती है, लिटरेचर जो होता है वो हमेशा अवेलेबल होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, किताबें हमें किरदारों के दिल में उतरना भी सिखाती है।
1: हाँ, और गाने उन्हीं जज्बातों को हमारी धड़कनों तक पहुंचा देते हैं।
0: बिल्कुल। एक फिल्म और याद आ रही है स्वेच्छा, गाइड,
1: जी
0: ना?
1: हाँ।
0: अब इस फिल्म की बात करते हैं, उससे जिसने जिंदगी को देखने का जो है एक उस समय में नजरिया ही बदल दिया था। उस वक्त पर जो गाइड फिल्म थी वो बड़ी ऑकवर्ड मानी जाती थी, लिव इन रिलेशन की बात की जाए तो आज की डेट में वो फिर भी कॉमन है, बट उस वक्त पर जब ये गाइड फिल्म आई थी तो ये बहुत अलग ही फ्लेवर था, सबके लिए एक चौंकाने वाली फिल्म थी।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। गाइड फिल्म के बारे में, गाइड 1965 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। ये भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक आर के नारायण के द गाइड नाम के उपन्यास पर आधारित है। और जो आपने इसका टॉपिक बताया जिस तरह से, तो ऑफ कोर्स ये आज भी थोड़ा यू नो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है,
0: अभी भी है।
1: सुनने के हिसाब से तो सोच ही नहीं सकते थे।
0: और तुम्हें पता है कि गाइड फिल्म का एक डायलॉग है जो कि गाने के तुरंत पहले है, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे कहानी में गाना गुथा हुआ है। वो डायलॉग पता है क्या है? आप लगती हैं 40 साल की, आप लगती थी 40 साल की औरत जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में छोड़ आई हैं, और आज लगती हैं 16 साल की बच्ची, भोली, नादान, बचपन की शरारत से भरपूर। जवाब में सवाल मिलते हैं, जानते हो क्यों? और गीत शुरू हो जाता है इसी के साथ, कांटों से खींच के आंचल, कितना सुनहरा वक्त था और कितने खूबसूरत गाने।
1: बिल्कुल।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047

0: हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले।
1: वाह क्या बात है, यानी ये मूवी जब देखे ना तो यही बात निकलती है, क्योंकि ख्वाहिशें से भरी हुई थी। इसमें जो हीरोइन थी उनके दिमाग में कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का जो मन था, वो दबाई हुई इच्छा जो है वो निकल के आई है। और ऐसा कहा जाए कि अदाकारी से ही नहीं बल्कि स्टोरी भी एक यूनिक पार्ट थी इस फिल्म का,
0: बिल्कुल।
1: और गाने भी उतने ही खूबसूरत।
0: हाँ, बेहद खूबसूरत मूवी थी, उस समय के हिसाब से बहुत आगे की सोच रखने वाली मूवी थी,
1: बिल्कुल।
0: और आज तक लोगों को वो प्रभावित कर रही है स्टोरी उस मूवी की,
1: बिल्कुल
0: उन लोगों
1: बिल्कुल।
0: की अदाकारी।
1: दोस्तों किताबें हमें किरदारों के दिल में उतरना सिखाती हैं और गाने उन्हीं जज्बातों को हमारी धड़कनों तक पहुंचाते हैं, है कि नहीं?
0: बिल्कुल सही बात कही आपने। वैसे नमिता, यदि हम अपने लिसनर से पूछें कि उनकी लाइफ पे कोई मूवी बनेगी तो वो उसका क्या नाम रखेंगे?
1: बिल्कुल, क्या नाम रखेंगे और साथ में उसमें कौन सा गाना बजेगा बैकग्राउंड में, ये ज़रूर हमको लिख भेजिए। हमारा नंबर जो है वो आपको पता ही है, हमारा नंबर है 8657661071। सो इस पर जल्दी से लिख के भेजिए आपकी लाइफ स्टोरी पर क्या

0: खास फिल्म बन सकती है, क्योंकि हर एक की अपनी एक कहानी होती है और वो भी कहा जाए ना बहुत यूनिक होती है। कुछ तो लेखक होते हैं जो अपनी किताबों पर लिख देते हैं और कुछ निर्देशक होते हैं जो बना देते हैं उस पर फिल्म्स, लेकिन कुछ एक लोग जो जिनकी कहानियां वाकई में प्रेरणादायक हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं होता कि जिस पे चल कर वो अपनी कहानी दर्शा सकें।
1: बिल्कुल।
0: वैसे आगे बढ़ते हैं, एक और फिल्म है जिसकी हमें बात करनी है और वो है परिणीता।
1: जी हाँ, ये भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी कह सकते हैं, और बहुत इसके म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। ये इसमें अदाकारी भी विद्या बालन, सैफ अली खान, संजय दत्त, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है।
0: बिल्कुल, कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसा होता है ना कि शोर नहीं करती, वो चुपचाप दिल में उतर जाती हैं। ठीक वैसे ही परिणीता भारत में उपन्यासों की संस्कृति को समृद्धि की तरफ ले जाती हुई दिखती है। उपन्यासों को बड़े पर्दे पर उतारने की भी बहुत अच्छी कोशिश हुई है, कई बार कामयाबी के साथ असफलता भी मिलती है। शरत चंद चट्टोपाध्याय के उपन्यास परिणीता पर बनी फिल्म भारतीय सिनेमा और सिनेमा प्रेमियों के लिए ये एक बहुत अच्छी विरासत कही जा सकती है, जिसे वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सिनेमा की अच्छी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। सैफ अली खान और विद्या बालन अभिनीत इस फिल्म की शुरुआत ही बंगाल की चीज़ों के जिक्र से होती है।
0: बिल्कुल,
1: बेहद ही भारी और दमदार आवाज में अमिताभ बच्चन जी ने जो कोलकाता का परिचय दिया है,
0: बिल्कुल
1: 1962 के कलकत्ता शहर की पहचान और कालीबाड़ी मंदिर, कॉफी हाउस, रसगुल्ला, फुचका, फुटबॉल और नहीं तो और तो और ललिता और शेखर की प्रेम कहानी,
0: बिल्कुल
1: इन सभी में जो दमदार आवाज के साथ उन्होंने अपनी बात बयां की है। अभी भी ये शहर ज्यादा बदला नहीं है, बदली है तो सिर्फ एक चीज, 1962 के कलकत्ते में एक ही ललिता और शेखर हुआ करते थे। इस शहर की मिठास और लालित्य भरे माहौल में वर्तमान में न जाने कितने प्रेमी जोड़ों को बयान किया होगा।
0: बिल्कुल,
1: प्रेम करना सिखाया होगा।
0: प्रेम करना भी आसान नहीं होता है, उसके लिए भी कई सारे प्रयास करने पड़ते हैं और कई बार आपकी नीयत जो होती है ना वो प्रेम को परवान चढ़ने पे मदद करती है कि नहीं।
1: बिल्कुल,
0: ये नगमा कुछ ऐसा ही है, आपको ले चलेंगे दूसरी ही दुनिया में परिणीता फिल्म का।

0: किताब
1: शुरू कीजिए, आप ही शुरू कीजिए।
0: नहीं, मैं बस यही बोल रही थी कि किताबें पढ़ी भी जा रही हूँ, गाने भी सुने जा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और हमने जैसा स्वेच्छा पूछा था ना अपने श्रोताओं से कि आपके उसमें जिंदगी पे अगर कोई फिल्म बने
0: जी।
1: या कोई बुक लिखी जाए तो क्या नाम होगा, तो बड़े अच्छे अच्छे आंसर आए मेरे पास, तो पहले वो सुना देती हूँ। तो पंकज जी अमरावती से लिखते हैं कि मेरे जीवन की कहानी पर अगर कुछ बनेगा तो उसका नाम होगा मिस्टर बेचारा। इवन प्रकाश शिंदे जी हमारे लिसनर हैं, रेगुलर लिसनर हैं, और वो लिखते हैं कि जब टीवी इंटरनेट नहीं था तब पूरे घर की रौनक हुआ करते थे हम, तब लोग ब्लूटूथ स्पीकर पर आ गए तो मज़ा ही अलग हो गया है। और हमारी जो फिल्म होगी, अगर कोई मूवी बनती है तो मैं और मेरा रेडियो नाम से बनेगी। तो ऐसे आंसर सुन के बड़ा अच्छा लगता है। तो रेडियो के इतने बड़े फैन फॉलोइंग है और आज भी उतनी ही चाव से सुनते हैं, जबकि हर कुछ आपके हाथ में है, जब चाहे जो गाना सुनना चाहें आप सुन सकते हैं। तो ऐसा कुछ रेडियो ने समा बांधा हुआ है ये माना जाए, है कि नहीं। वैसे बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी की फरमाइशें आ चुकी है हिट एंड हॉट के लिए, लेकिन हमारी बातें अभी पूरी नहीं हुई है कि नहीं। अगली कुछ और दो तीन फिल्में हैं जिनको सिर्फ मेंशन कर सकते हैं हम यहाँ पर, और उसमें से थ्री इडियट एक मूवी है जो हम सभी ने देखी है, सभी उसके गाने बहुत पसंद करते हैं,
0: मूवी भी बहुत पसंद करते हैं
1: वाकई। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ना, किताबों पर बनी हुई मूवीज जो होती हैं वो इंटरेस्टिंग भी होती है और उनमें पता नहीं कैसे संगीत भी बड़ा अच्छा होता है।
0: ये बात बिल्कुल ठीक है। कई सारी मूवीज हैं, थ्री इडियट है, काय पोछे है, रजनीगंधा है, ऐसी कई सारी
1: मूवीज
0: हैं जो किताबों पे बनी है और हिट भी हुई है, और हम अपने नजरिए से देखें तो बहुत खूबसूरत कहानियां हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हर कहानी का, हर एक किरदार का एक अलग फ्लेवर आता है जब वो किताबों से उठ के आते हैं। और जब हम कहें कि कुछ सीधी बात हुई है, किसी ने सीधे एक स्क्रिप्ट लिखी है और उस पे बोल रहे हैं, तो वो एक अलग फ्लेवर देगा आपको। तो पता भी चल जाता है कि किताबी चीज़ें कैसी होती हैं, वो कैसे उनके कट्स होते हैं, उनकी जो कहा जाए कि पिक्चराइजेशन है उसमें जो डिफरेंस होता है वो भी दिख जाता है, है कि नहीं। और ऐसी फिल्म का ये वाला गाना थ्री इडियट्स से आप तक पहुँच रहा है FM रेनबो पर।

0: So, बहुत सारी फिल्में हैं और हमारे जो लिसनर्स हैं ना स्वेच्छा,
1: हम्म,
0: वो बता रहे हैं कि कितने और सारी मूवीज हैं जिन पर, जो किताबों पर आधारित है,
1: जी
0: और हमें अच्छा लगता है कि कुछ टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कि
1: बिल्कुल
0: नहीं। वैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिट एंड नॉट में, लेकिन इस समाचारों के उस पार हम मिलेंगे आपसे आपकी फरमाइशों के साथ। बने रहिए यहीं एफ
1: हमारे
0: एम
1: साथ
0: रेनबो पर।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: हाय हेलो सत श्री अकाल वणकम गुड आफ्टरनून सभी को. आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हिट एंड हॉट प्रोग्राम में. मैं यानी नमिता और साथ में है स्वेच्छा और हम स्वेच्छा से ये कार्यक्रम जो है आपको डेडिकेट करते हैं क्योंकि हम आपकी पसंद के गाने यहाँ सुनवाते हैं.
2: बिल्कुल.
1: सो बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जिनकी पसंद हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है. कुछ एक नाम ज़रूर लेना चाहूँगी जल्दी जल्दी से. विजेंद्र जी हमारे साथ हैं, प्रमोद जी हैं, महेश जी हैं, अभिजीत जी, अजय जी, किशोर जी, शुभदा जी, प्रदीप जी, प्रकाश जी, दिग्दर्शन और कविता जी, अमिता जी, राकेश जी, संदीप जी, पंकज मोहिर जी और राजेंद्र परमार जी, अंजू जी, बाबा जी, शुभ लक्ष्मी जी और साथ में हैं रजनीकांत पाटिल और अशोक जी, अशोक पाटिल जी वर्ली से, मुलुंड से अशोक जी, विजय जी और श्रेय राउत जी, फिरोज जी, प्रणव जी, चेतन जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. और आप सभी के जितने भी मैसेजेस हैं उन्हें पूरी तरह से पढ़ा जाता है, समझा जाता है और कोशिश की जाती है कि आप सभी की फरमाइशें पूरी की जाए. तो सबसे पहले हिट एंड हॉट में हम ले रहे हैं रजनीगंधा फिल्म का गाना जिसे पसंद किया है शुभदा जी ने. बने रहिए यहीं एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक.

0: जी हाँ, हार के बाद ही जीत है, इसीलिए आपके लिए लेके आई हूँ मैं पजल। हार और जीत का फैसला भी अभी हो जाएगा। बिल्कुल, ये गीत आपने सुना था अजय साकरे जी की पसंद पर, और विजय जी की पसंद का अगला नगमा आने वाला है। लेकिन सबसे पहले स्वेच्छा हम बता देते हैं अपने लिसनर्स को कि हम कौन सा डायलॉग बोलने वाले हैं। आपको बताना है फिल्म का नाम। किस नंबर पर बताना है?
1: आप बता सकते हैं 8657661071 पर।
0: बिल्कुल, ये नंबर रट लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले जवाब देना है, क्योंकि सवाल तो मेरा बहुत आसान है, बस आपका स्पीड जो है ना वो मैटर करता है। तो डायलॉग ऐसा है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। आगे की लाइन मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, नहीं तो एक वर्ड में ही आप पहचान जाएंगे। जल्दी से लिख भेजिए कौन सी फिल्म का ये डायलॉग है, और हम तब तक सुनते हैं विजय जी की पसंद का ये वाला गाना।

0: जी, तो आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, और इस समय हिट एंड हॉट में चल रहे हैं आपके पसंद के गाने। और हाँ, जो आपसे पूछा गया था उसका बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है।
1: बिल्कुल। और हमने क्या पूछा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। कौन
0: जी
1: से फिल्म का ये डायलॉग है? तो इसका सही जवाब है धड़कन फिल्म का ये डायलॉग है। आगे अंजलि भी था जो मैंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी वरना बहुत क्विकली आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बड़ी क्विकली पता भी कर लिया और लिख के भी भेज दिया। उसमें सबसे पहला स्थान आता है प्रकाश शिंदे जी का, जिन्होंने फटाफट लिख के हमें दे दिया जवाब। उसके अलावा भी पंकज जी ने, दिग्दर्शन जी ने, प्रदीप जी ने, संदीप जी ने, महेश जी ने, प्रांजल जी ने, शुभदा जी ने, राकेश माथुर जी ने सही जवाब दिया है। बहुत सारे और भी लिसनर्स हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, शुभ लक्ष्मी जी ने भी, इवन वजेंद्र जी ने भी हमें सही जवाब दिया। इतने सारे सही जवाब होने के बावजूद जिसने सबसे पहले सही जवाब दिया भाई ट्रॉफी तो उसी के हाथ में जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए।

0: आप अगर जल्दी से जवाब देते हैं तो हम अगले सवाल पे आ जाते हैं. सो आपको बताना है हमें इस डायलॉग की फिल्म का नाम. मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं. कौन सी फिल्म का यह डायलॉग है जल्दी से बता दीजिए. हमारा नंबर है
1: 8657661071.
0: बिल्कुल बने रहिए यहीं FM रेनबो के साथ. अभी जो गाना आप सुनने जा रहे हैं इसे पसंद किया है सिमेतेश मुक्काने ने.

0: जी हाँ, म्यूजिकली योर्स एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ नमिता, साथ में स्वेच्छा, और हमने पूछा था एक सवाल।
1: हाँ, तो सवाल ये था कि ये किस मूवी का डायलॉग है, मैं मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं।
0: जी हाँ, तो और फिल्म का नाम है किक।
1: का नाम है किक।
0: बहुत सारे सही जवाब हमारे पास आए हैं, बहुत सारे हमारे लिसनर्स ने तुरंत तुरंत किक मार दी है। और सबसे पहली जो किक आई है वो आई है राकेश माथुर जी के पास से। पंकज जी की भी पहल बिल्कुल बहुत अच्छी थी। पंकज जी मुहिर से जो लिख रहे हैं, उन्होंने भी बहुत त्वरित लिख के हमें दे दिया था, लेकिन उनसे पहले जो है राकेश माथुर जी का जवाब आ गया। इसके अलावा शुभदा जी, प्रदीप जी, हिरमानी जी, प्रमोद जी, प्रकाश जी, विजेंद्र जी, आप सभी के जवाब हमें मिल गए हैं। सुबह लक्ष्मी जी ने भी हमें सही जवाब लिख के दिया है, और महेश जी ने भी सही जवाब लिखा है, नितिन जी, मेहर अरोरा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पजल में शामिल होने के लिए। एक और डायलॉग जो हम आपसे पूछने वाले हैं, और बहुत आसान सा डायलॉग है, आपको मतलब मेरे बोलते बोलते ही फिल्म का नाम याद आ जाएगा, लेकिन लिखने में आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है ये हम चेक करेंगे। तो डायलॉग है, बताएंगे स्वेच्छा?
1: हाँ बिल्कुल। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार भी एक बार होता है।
0: कौन सी फिल्म है, जल्दी से लिख भेजिए हमारे इसी नंबर पर जो है
1: 8686766107 पर।
0: बिल्कुल बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। आ रहा है ये अगला गाना आप ही की पसंद पर, और ये पसंद करता है अशोक जी मुलुंड से।

0: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और जैसा कि हमने आपको बताया था, आपसे पूछा था एक सवाल, और सवाल के जवाब में बहुत सारे जवाब आ चुके हैं। हमने पूछा था, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार भी एक बार होता है, ये डायलॉग कौन सी मूवी का है? तो इसका सही जवाब बताएंगी स्वेच्छा आपको।
1: कुछ कुछ होता है
0: बिल्कुल। और पता है हमारे कुछ लिसनर्स ने उसको K2H2 करके भी लिखा है, शुभदा जी ने एक्चुअली ऐसे लिखा है, और बहुत सारे लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से लिखा है, कई लोगों ने तो स्टोरी ही लिख दी है, बहुत जल्दी लिखने को बोला था मैंने तो काफ़ी डिस्क्राइब करके भी लिखा है। फिलहाल हम ये कहें कि किसने सबसे पहले लिखा है, तो प्रकाश शिंदे जी और नितिन जी ने हमें सबसे पहले ही इस सवाल का जो है जवाब दिया है, साथ साथ ही दिया है शुभदा जी ने भी, प्रदीप जी ने भी, राजेश जी, पंकज जी, महेश जी, गुलाब जी, और प्रमोद जी ने हमें जवाब दिया है, साथ ही राकेश माथुर जी ने भी, शुभलक्ष्मी जी ने भी हमें सही जवाब दिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का। फिलहाल अगला ये गाना सुनते हैं, अमर प्रेम का गाना है, और इसे पसंद किया है बाबा जी ने दादर से।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट।
1: जी
0: तो अब
1: हाँ, और हम जो है ना पजल्स तो पूछते ही हैं, लेकिन जब हमारे जाने का वक्त होता है ना तो कुछ एक दो डायलॉग हम मार भी देते हैं। तो ये कुछ लाइंस जो हैं वो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो।
0: वाह,
1: भाई आगे भी बढ़ते हैं, आपको ध्यान रखने के लिए भी सलाह देनी है हमें, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह आपके लिए है कि शरीर में पर्याप्त पानी बनाए रखें, शरीर को ढककर रखें, गर्मी से बचाएं, हीट वेव से बचाएं, सतर्क रहें, रेडियो टीवी सुने, बिल्कुल समाचार पत्र पढ़ें, लेकिन बाहर जाने की हिमाकत ज़्यादा ना करें, यथासंभव घर पर ज़्यादातर रहें, छायादार जगहों पर रहें, और कोई भी ऐसे समूह में शामिल ना हो जो संवेदनशील हो या जोखिम भरे हों, छोटे बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का, हृदय रोग वालों का, इन सभी का खास ध्यान रखें, क्योंकि गर्मियाँ बढ़ चुकी है कि नहीं
0: जी
1: इस पेचा?
0: बिल्कुल।
1: फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी के साथ हम जुड़े, और ये 3 घंटे पता नहीं कैसे यूं ही बातों बातों में निकल गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमें सराहने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मैसेजेस मैं देख रही हूँ नमिता, और सबने जो भी बोला सबके लिए थैंक यू।
1: जी
0: आगे
1: जी
0: यूं ही हम बने रहेंगे इस गाने के साथ।

खानेदार फिल्म के इसी गाने के साथ समापन होता है हिट एंड हॉट प्रोग्राम का। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय। और ये गाना जो है राजेश मीना जी ने बेंगलोर से पसंद किया है। आप सभी कुछ ही पलों में समाचार सुन सकेंगे, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ।

0: after Thailand's world number two Kunlavut Vidithsarn retired hurt just moments into their round of 16 clash. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में

0: आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धरमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डी के शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
1: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धरमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धरमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
3: मध्य प्रदेश

0: یہ تمام شہروں میں آج عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا تہوار خوشی اور امن کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ صبح سے ہی مسجدوں اور عیدگاہوں میں لوگوں کی بھاری بھیڑ دیکھی گئی۔ راجدھانی بھوپال کی اتہاسک تاج المسجد میں ہزاروں لوگوں نے نماز ادا کی۔ اندور سے ایک خوبصورت تصویر بھی سامنے آئی۔ یہاں 50 سال پرانی پرمپرا کے مطابق ایک ہندو پریوار نے شہر قاضی کو پھولوں کا ہار پہنا کر بگھی میں عیدگاہ تک پہنچایا۔ دوسری طرف مدھیہ پردیش وقف بورڈ نے کہا ہے کہ قربانی کیول طے جگہوں پر ہی کی جائے۔ ابھینو گوئل، آکاشوانی بھوپال۔
1: پشچم بنگال سے ہمارے سنواددتا کی ایک رپورٹ۔
2: عید الاضحیٰ بلیدان کا پرو آج دیش کے ہر ایک جگہ کے ساتھ پشچم بنگال میں بھی یہ خوشی کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کولکاتہ میں عید کی نماز پارمپرک ریڈ روڈ کے بجائے بریگیڈ پیریڈ گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ ایتیہاسک ناکھودا مسجد میں نماز 2 شطروں میں آیوجت کی گئی تاکہ سڑکوں پر بھیڑ نہ ہو۔ راجیہ سرکار نے شانتی اور انوشاسن بنائے رکھنے کے لیے کولکاتہ ہائی کورٹ کے پرانے نردیش کی سختی سے لاگو کیا ہے۔ آکاشوانی سماچار کے لیے کولکاتہ سے نہار۔
1: شری لنکا سے ہمارے سنواددتا نے بتایا ہے کہ عید الاضحیٰ کا تہوار وہاں ہرش الاس کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔
3: آج شری لنکا میں عید الاضحیٰ یعنی بقرعید شردھا اور اتساہ کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ صبح مسجدوں اور عیدگاہوں میں وشیش نماز ادا کی گئی، جہاں لوگوں نے امن، بھائی چارے اور قربانی کے سندیش کو یاد کیا۔ پریواروں اور سمودایوں نے مل کر تیوہار منایا تتھا ضرورت مندوں میں بھوجن اور سہایتا وترت کی۔ شری لنکا کے راشٹرپتی انورا کمارا دی سنائکا نے بھی سبھی کو عید کی شبھ کامنائیں دیتے ہوئے دیش میں ایکتا اور سد بھاؤ بنائے رکھنے کا سندیش دیا۔ احمد معین فاروقی، آکاشوانی سماچار، کولمبو۔
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हों या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड है मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूँ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूँ। और ये एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुँचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफ़र से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वही नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है
0: जी। होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें।

क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुँचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार हैं भेजिए ज़रूर।

संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप

0: You were honors in chemistry, MBA in finance. कभी सोचा था कि आप CRPF join करेंगे?
1: Not exactly CRPF. पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का. ये CRPF ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था. बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था. बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया. सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था. हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक.
0: क्या बात है. आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप CRPF ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, CRPF भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था. मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी. तो उस जमाने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पर जा सकता है. और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं.
0: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं.
1: 2004 तक ये एग्जामिनेशन CPOs कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से UPSC ने ले लिया. तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्ज़ाम निकालती हैं. तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाई फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो. तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है. और UPSC की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं. आज की डेट में बहुत आसान है.
0: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए, तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF.
1: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी. सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस.
0: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
1: इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है. बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं. तो एंट्री लेवल है, जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप, असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं.
0: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
1: मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी.

0: ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फ़ोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई दूरभाष फ़ोन के माध्यम से, लोगों ने बताया तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरे बैंक में सारे बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
1: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि सरकारी का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
0: निसंदेह है, बहुत खुशी के बहुत है। मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ, देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था।
1: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, इसे सुखद बात और को छू नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा, ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
0: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, बट लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको, आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व तो एक डिफरेंट, एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा CRPF में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
1: अपने,
0: हाँ, बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
1: जी, तो CRPF तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद CRPF में रहते हुए, यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से, यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
0: जी,
1: तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहां पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि

कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ FM रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूं कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी की FM रेनबो पर हमें। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल, और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी जुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है, और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज्यादा

0: ज्यादा आसान. कमांडेंट अभिराम, सीआरपीएफ, जब आप सीआरपीएफ का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को. तो अगर आप से मैं सीआरपीएफ के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ, तो सबसे पहले हम सीआरपीएफ को थोड़ा सा और जान लें. तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें सीआरपीएफ के बारे में.
1: सीआरपीएफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में. और इस सीआरपीएफ की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है. चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में सीआरपीएफ ने लड़ाई लड़ी थी. हाँ. और उसमें हमारे सीआरपीएफ के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी. आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल. फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था. और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था. तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है सीआरपीएफ में. सीआरपीएफ ने इन तीनों थिएटर्स, जम्मू कश्मीर, एलडब्ल्यूई थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में. तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो सीआरपीएफ का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है. इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, सीआरपीएफ अपने आप में एक मिनी इंडिया है. हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं. तो सीआरपीएफ एक मिनी इंडिया. आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे. और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं. सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है. सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है. सीआरपीएफ को 1 अशोक चक्रा, 10 कीर्ति चक्रा, 39 शौर्य चक्रा, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक. तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है. तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती है.
0: जी, निश्चित ही आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर दिया. और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए. तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ. सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है. जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है. और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, कौन कौन से गेम्स हैं?
1: देखिए, सीआरपीएफ में हमारा चूंकि मूवमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है. तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं. तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं. उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला. टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफ़ी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी का जो गेम होता है, वो उससे काफ़ी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं एक छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
0: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो

0: आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचू के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की भावना।
1: वाह, क्या बात है।
0: तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन CRPF में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको CRPF ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो CRPF का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है, और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पिनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
0: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
1: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी, और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा, और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में। लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा CRPF की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और CRPF ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ, एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें CRPF की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था, और CRPF ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
0: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
1: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और CRPF ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो CRPF का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों

0: वो बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं, उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी।
1: वाह, क्या
0: बात। तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा, और दो मौक़ों पे मैं गया। 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया, तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: वाह, क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार की बात, फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह सीआरपीएफ। आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है, आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है। और आप उसको जीते हैं, और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफी अच्छा अनुभव रहा है।
1: जी, एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है, मुझे ऐसा महसूस होता है। सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है।
0: जी,
1: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है, कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके? तो क्या आपकी किसी, ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था, आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने, उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का। वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे, क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं सीआरपीएफ का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ, जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
1: 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको, उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
1: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे, और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हम कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं। हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है, और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप सीआरपीएफ में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है, ना केवल सीआरपीएफ का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे। तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे, मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ? कैसा होता था आपके साथ?

0: निसंदेह निसंदेह ये होता था एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ हर एक तबके के लोगों के साथ बच्चों के साथ युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था। और CRPF भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए। तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का CRPF के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के। CRPF ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है। आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो CRPF का है, और CRPF लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है। और मैं इसलिए CRPF मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
1: वाह क्या बात है। जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है। कैसा होता है?
0: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में। एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर। आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
1: जी।
0: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है। आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन करता, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
1: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जब आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत। बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है। क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत सा आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज़ के माध्यम से ऐसी योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुँचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी जिंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: आप मुझे टाइम ट्रैवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है,

0: तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है तो एक मैं इस मामले में अगेन मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
1: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से आपने बैठा लिया, और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
0: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना और वो कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ और मैं थैंकफुल हूँ।
1: जी, निश्चित रूप से कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
0: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी ज़िंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
2: तो
0: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिनाका गीत माला लेकर आते थे। और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतज़ार करते थे, और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतज़ार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या गोल्डन वॉयस थी उनकी। तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताज़ा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का, इस मौके के लिए।
1: बिल्कुल। और ये जो सफ़र है ये बहुत ही सुखद सफ़र है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द मैं बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने,
1: बिल्कुल,
0: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें, और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
1: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से, कि आप अपने बच्चों को ना खेल में ज़रूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स से एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को ज़रूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है।
0: निसंदेह
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों

और हमने कार्यक्रम की शुरुआत की इस मीठे से गीत के साथ। दोस्तों नमस्कार, शाम के ठीक 5:07 का वक्त, स्टूडियो में आ गई हूँ मैं, यानी कि आपकी आरजे दोस्त अमिता, लेकर अपने साथ अपना सुनहरा पिटारा जिसमें है बहुत सारी बातें और बहुत सारे गीत। और शाम को ठीक 5-6 वक्त होता है लव यू जिंदगी कार्यक्रम का, वो कार्यक्रम जहां बातें होती हैं जिंदगी की और जिंदगी से जुड़ी हुई उन छोटी छोटी खुशियों की। पर अपनी बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात तो मैं आप सभी से ज़रूर कहूंगी कि भाई बाहर जो है ना गर्मी का पारा बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए अपनी तबीयत का, अपना और अपनों का ज़रा ध्यान रखिएगा। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और अगर धूप में निकलने की कोई दरकार ना हो, कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो जब तक, तो जितना हो सके आप तेज़ धूप जो है वो अवॉइड करिए। दोस्तों आज लव यू जिंदगी कार्यक्रम में कुछ बातें करेंगे हम, पर शायद आपको लगे कि आखिर ये सारी टेक्निकल बातें क्यों रही हैं। जैसे कि आपने कई तरह के पुल देखे होंगे, लोहे के, सीमेंट के, पत्थरों के, लेकिन क्या कभी आपने उस पुल के बारे में सुना है जो उगता है, जो उगता है, जिसे किसी भी बाहरी मतलब लोहे सीमेंट या पत्थरों से बनाया नहीं जाता। ज़्यादातर हम इन सारी चीज़ों को निर्जीव कहते हैं, सजीव निर्जीव, पर ये जो पुल है ये सजीव है, जीता जागता पुल, अ लिविंग पुल। आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ भारत के एक ऐसे कोने में जहाँ इंसान और प्रकृति मिलकर एक ऐसी मिसाल बनाते हैं जिसे देखकर लगता है कि अगर हम सच में चाहें ना तो हम अपने विकास को नेचर के साथ साथ ढाल सकते हैं और नेचर के साथ चल सकते हैं और विकास भी और प्रगति भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस की। खासी जनजाति के लोग सदियों से रबर फिग यानी कि फाइकस इलास्टिका पेड़ों की जड़ों को मोड़ कर, गूथ कर और उसे एक पर्टिकुलर दिशा दे करके पुल तैयार करते हैं। और अब ये पुल हमारी लाइफ में भी किस तरह से बदलाव ला सकता है, इस बारे में भी आज ज़रा बात करेंगे हम यहाँ लव यू जिंदगी कार्यक्रम में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें।

अलका याग्निक ने कबीजीत और साथियों की आवाज़ों में चलते चलते फिल्म का ये गीत ओनली ऑन एफएम रेनबो जो है म्यूजिकली योर्स। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ, और आज हम यहाँ लव यू जिंदगी कार्यक्रम में बातें कर रहे हैं उस लिविंग रूट ब्रिज की जो मेघालय की शान भी है। दोस्तों सोचिए ना, जिस काम के लिए हमें मशीनें, सीमेंट और न जाने कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, हम उनका इस्तेमाल करते हैं और तब जाकर के बनाते हैं एक सालों साल टिकने वाला ब्रिज, पर उसे भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। और वहीं खासी जनजाति के लोग जो हैं वो पेड़ों की जड़ों से पुल बना लेते हैं, और मज़े की बात ये पुल समय के साथ कमज़ोर नहीं बल्कि और मज़बूत होते जाते हैं। इन पुलों को तैयार होने में लगभग 15 से 30 साल तक भी लग जाते हैं। यानी कि ये सोचिए कि अगर किसी इंसान ने इसे शुरू किया तो ये भी हो सकता है कि वो खुद इसको कभी पूरे रूप में देख ही ना पाए, पर वो इसे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाता है। आज की दुनिया में जहां लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं कि बस अभी का अभी मिल जाए, वहीं मेघालय के लोग हमें धैर्य और पेशेंस और साथ ही साथ कि भविष्य के लिए काम करना सिखाते हैं, है ना? कितनी अनोखी सी बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

शाम के ठीक 5:38 का वक्त दोस्तों सुन रहे हैं आप लव यू जिंदगी कार्यक्रम अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ, और बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो हैं उनके भी मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। प्रकाश शिंदे लिखते हैं कि लोकल की भागदौड़ में जब मिले ठंडी हवा का झोंका, रेनबो के सुरों ने जैसे हमें आहिस्ता से हो छू लिया, नज्म गीत और चाय की चुस्की इस मौसम की शान है। मुंबई की ये ठंड इन्होंने लिखी है, लेकिन ठंड तो नहीं है, गर्मी का मौसम चल रहा है। और आगे लिखते हैं कि तपती धूप, समंदर की नमी और मुंबई का ये मिजाज, AIR रेनबो के गीतों सा हर पल है लाजवाब। धन्यवाद प्रकाश शिंदे, आपने बहुत बढ़िया तुकबंदी जो कर रखी है। और पंकज मोहड का भी मैसेज आ गया है अमरावती से, लिखते हैं कि भाई आप जो गाने आज सुना रही हैं वो सच में एक से बढ़कर एक और सब बहुत पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ ये जो लिविंग रूट ब्रिज की जो हम बात कर रहे हैं वो भी उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और रजनीकांत पाटिल का मैसेज आ गया है वाडवन से, वो भी लिखते हैं भाई कार्यक्रम उन्हें पसंद आ रहा है और बहुत सारे चाय की प्याली के फोटोज जो हैं वो हमें भेज दिए हैं अरविंद कुलकर्णी ने इचलका रणजी से। भाई धन्यवाद आप सभी का कि आप हमारे साथ इसी तरह से बने हुए हैं। और अभी अभी मैसेज आ गया है फिरोज सिगन पोरिया का भी, और वो आज का ये प्रोग्राम सुन रहे हैं अपने व्हाट्सएप वर्ल्ड म्यूजिक लवर्स ग्रुप के साथ। तो आप लोगों का धन्यवाद। और दोस्तों आपको भी कार्यक्रम में कौन सी बातें अच्छी लगी, कौन सी बातों या कौन से गीत ने आपका दिल को छू लिया, ये भी हमें बताइए। और फिलहाल मैं आती हूँ अपने कार्यक्रम यानी कि लव यू जिंदगी में वापस, और अपनी बातों पर वापस आती हूँ जो आज हम बातें कर रहे हैं मेघालय के उन लिविंग रूट ब्रिज की। दोस्तों ज़रा सोचिए ना कि अगर हमारी सोच भी इन जड़ों जैसी हो जाए तो, जो धीरे धीरे जुड़ती है, एक दूसरे को थामती है, जो और शायद अगर इस तरह से हो जाए तो रिश्तों के जो ये पुल है ना वो भी कभी नहीं टूटेंगे, है ना। आज हम फ्लाईओवर्स बना देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम बस कुछ मिनटों में ही तय कर लेते हैं, लेकिन दिलों के बीच की जो ये दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही हैं। और मेघालय के जंगलों में खड़े हुए ये लिविंग रूट ब्रिजेस जैसे कह रहे हों, जुड़ना है तो जड़ों से जुड़ो। इन पुलों की सबसे खूबसूरत बात यह है दोस्तों कि ये प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। भारी बारिश हो, बाढ़ का मौसम हो, या फिर हो मौसम में बदलाव, इन सब उतार चढ़ावों के बीच भी ये मजबूती से खड़े रहते हैं। आज पूरी दुनिया इन्हें सस्टेनेबल इंजीनियरिंग और इको फ्रेंडली इनोवेशन की मिसाल मान रही है, यहां तक कि इन्हें यूनेस्को हेरिटेज रिकॉग्निशन के लिए भी प्रस्तावित किया गया है। अब इन पुलों से, इन लिविंग रूट ब्रिजेस से हम चाहें तो क्या कुछ नहीं सीख सकते, बस जरूर

शायद यही है प्यार, नोक झोंक के साथ जिंदगी यूं ही बीत जाती है। दोस्तों बस अब लव यू जिंदगी कार्यक्रम को समेटने का भी समय आ गया है, और चलते चलते बस यही कहूंगी कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, अगर जड़ें मजबूत हो तो तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान टूटता नहीं बल्कि उसके पार निकल ही आता है। तो आज जब आप अपने जीवन के पुल बना रहे हों, रिश्तों के पुल बना रहे हों, अपने सपनों के पुल बना रहे हों, किसी के साथ भरोसे का पुल बना रहे हों, तो थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा प्रेम से बस उसे जोड़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रकृति से सीखिए। प्रकृति में कोई भी चीज़ जो है वो रातों रात नहीं बनती है, समय लगता है, लेकिन जब वो बनकर तैयार होती है तो उसके जैसा और कोई नहीं होता। और सबसे मजबूत पुल वही होता है जो दिल से बनते हैं, समय की जो कसौटी होती है उस पर वही पुल खरे भी उतरते हैं। और इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं आपकी आरजे दोस्त अमिता आप सभी से विदा लेती हूँ, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये कार्यक्रम लव यू जिंदगी समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे नागपुर केंद्र से, और उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होगी कार्यक्रम अंदाजे बयां में ठीक 6:15 पर। तो आप कहीं भी मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल जो है म्यूजिकली योर्स, और सुनते रहिए लव यू जिंदगी, जहां बातें होती हैं दिल से और जिंदगी के साथ।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: दोस्तों नमस्कार. शाम के ठीक 6:15 का वक्त और ये वक्त होता है अंदाज़े बयां कार्यक्रम का. मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता. और दोस्तों आज अंदाज़े बयां कार्यक्रम में हम बात करेंगे मशहूर शायर बशीर बद्र साहब की. आज उर्दू अदब का एक चमकता हुआ सितारा हमसे दूर हो गया. मशहूर शायर लफ्ज़ों के जादूगर, इंसानी जज्बात के सबसे नर्म तर्जुमान डॉक्टर बशीर बद्र साहब अब हमारे बीच नहीं रहे. भोपाल में 91 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. दोस्तों कुछ शायर किताबों में मिलते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी में. बशीर बद्र साहब उन्हीं शायरों में से थे जिनके शेर मोहब्बत करने वालों की धड़कनों में बसते थे, या यूँ कहूँ कि सिर्फ बसते नहीं थे बल्कि अब उन्हीं धड़कनों में वो जिया करेंगे.

दोस्तों, बशीर बद्र साहब की जब भी बात आएगी तो बात उनकी उस कलम की होगी जिसने मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों और इंसानी जज्बात को शब्दों के ज़रिए हर दिल तक पहुंचा दिया। उनकी शायरियां सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, वो लोगों की बातचीत में रही, महफिलों में रही, प्रेम पत्रों में रही और अकेलेपन की रातों में भी रही। कौन भूल सकता है उनका वो मशहूर शेर, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां अपनी आर्च दोस्त अमिता के साथ, और आज अंदाज़े बयां कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बशीर बद्र साहब की। दोस्तों बशीर बद्र साहब ने अपनी ज़िंदगी में दर्द भी देखा, लोगों का बिछड़ना भी देखा। दंगों में उनका घर और उनकी लाइब्रेरी जल गई थी, लेकिन उन्होंने नफ़रत के जवाब में भी मोहब्बत ही लिखी। उन्होंने कहा, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हों।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों, बशीर बद्र साहब की गजलों में तन्हाई भी थी मगर उम्मीद कभी नहीं टूटी। जब दिल टूटा तो उन्होंने लिखा था, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कोई कांटा चुभा नहीं होता, दिल अगर फूल सा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। गुफ्तगू उनसे रोज होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या क्या नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। और जब जिंदगी ने थका दिया तब भी वो बड़ी सादगी से कह गए, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर से मुलाकात होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि परिवार जब उन्हें अपनी गजलें सुनाता तो कभी कभी वो अधूरे शेर खुद पूरा कर देते थे। जैसे उनके अल्फाज अब भी उनकी रूह में सांस ले रहे हों। दोस्तों, शायर कभी मरते नहीं, वे अपने लफ्जों में जिंदा रहते हैं, चाहने वालों की धड़कनों में बसते हैं, महफिलों में, किताबों में और उन लोगों के दिलों में जो उनसे बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। और आज अंदाज़े बयां कार्यक्रम में हम बशीर बद्र साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

और दोस्तों इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम अंदाज़े बयां होता है समाप्त। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे मराठी में समाचार और मैं लौटूंगी लेकर कार्यक्रम हम तुम ठीक 7:10 पर। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: दोस्तों नमस्कार, शाम के ठीक 7:11 हो रहे हैं और आइए शुरू करते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम। और आज की इस शाम मैं हूं आपके साथ, आपकी आरजे दोस्त अमिता, जो पूरी करने वाली है आपकी फरमाइश। आपके पसंद के गाने आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आज है मेरे कंधों पर, और आप अपनी रिक्वेस्ट जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं 8657661071 इस नंबर पर मैसेज करके। और फिलहाल कार्यक्रम का ये पहला गीत, और गीत के साथ है ढेर सारी बेस्ट विशेस और बधाइयां भी। ये गीत जो है, इसकी फरमाइश हमें भेजी है कुरला से आयास चौधरी ने, और इस गीत के साथ वो सभी सुनने वालों को, एफएम रेनबो परिवार को कह रहे हैं ईद मुबारक, और पूरे एफएम रेनबो परिवार की तरफ से भी दोस्तों आप सबको भी ईद मुबारक।

दिल जले फिल्म का ये गीत दोस्तों अभी हमने सुना, विजेंद्र घटोल जिनकी पसंद आई थी अकोला से, इनकी फरमाइश पर हमने दिल जले फिल्म का ये गीत सुना। और इस पसंद में और भी बहुत सारी पसंद जो है वो शामिल हो रही है, रजनीकांत पाटिल वाडवन से और साथ ही साथ तिगरेपाड़ा से मिलेश गजानन राउत, श्रेय मिलेश राउत और आर्य मिलेश राउत। माटुंगा से हमें सुन रहे हैं इस वक्त हसमुख भाई और कह रहे हैं कि भाई आपका ये जो कार्यक्रम है वो इंजॉय कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। और महेश बोहारा भी हमें सुन रहे हैं अजमेर राजस्थान से, और उन्होंने लिखा है कि आज के समय में दिलों का पुल अगर बांधना है, उसको आबाद रखना है, तो अपने बीच में जो भी कड़वाहटें हैं उसको मिटाना होगा, और ये संभव होगा एकजुटता से। इसलिए आपस में मतभेद कितना भी हो जाए लेकिन मन भेद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये सारी बातें उन्होंने जो हम आज लव यू जिंदगी कार्यक्रम में लिविंग रूट ब्रिज की जो बात कर रहे थे उसके लिए लिखी है, सो थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ किशोर बोरातने का भी मैसेज आया, और संजय पाटिल लिखते हैं शुभ संध्या, और राजेंद्र परमार ने भी जो है गुड इवनिंग लिख करके भेजा है। और दोस्तों अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं अगली पसंद जो आई है प्रकाश शिंदे की तरफ से, और ये जो गाना है वो डेडिकेट करना चाह रहे हैं अपने अजीज दोस्त श्रीधरन सर को, क्योंकि आज है उनके श्रीधरन सर का हैप्पी वाला बर्थडे। तो हम सभी की तरफ से, पूरे एफएम रेनबो परिवार की तरफ से श्रीधरन जी को भी हैप्पी बर्थडे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कभी खट्टी मीठी तकरार,
2: जब तुम चाहो पास आ दे हो।
1: कभी बेइंतहा प्यार,
3: बे इंतहा।
1: कभी चुलबुली सी शरारत, तो कभी मासूमियत बेशुमार।
4: ये है अनोखे रंगों वाला
1: FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर,
4: दिल से
1: दिल तक
2: मन वाला गे, ओ मन वाला गे, लागे रे साबरे, लागे रे साबरे।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता। और अब दो गाने आने वाले हैं आपके पास बैक टू बैक और इन दो गानों के साथ पूरी होने वाली है फरमाइश अमरावती से पंकज मोहोट की और साथ ही साथ मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम ओनली ऑन एफएम रेनबो, जो है म्यूजिकली योर्स। और अब आप अपने प्यारे फेवरेट एफएम रेनबो मुंबई को कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से। और अब बस कार्यक्रम का कुछ ही समय बचा है और देखते हैं कि किन किन श्रोताओं ने हमें मैसेज किए हैं। और हीरामणि वर्मा का मैसेज आया है और ये हैं हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, और इन्होंने मैसेज किया है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। वहीं अरविंद कुलकर्णी का भी मैसेज हमें मिला है और राम प्रजापति ने वसई से हमें मैसेज किया है और मैसेज किया है हमें नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। और वहीं प्रमोद चिंचोलकर उमरिया कोला से भी उन्होंने मैसेज किया है। और अंकित का मैसेज आया है, साथ ही साथ मैसेज आया है प्रणीत का भी, और प्रणीत ने मैसेज किया है बैंगलोर से। और फिलहाल दोस्तों अब चलिए सुनते हैं अगला गीत, और ये जो गीत है ये आ रहा है, आप तक पहुंच रहा है प्रदीप अनंत कृष्णन की फरमाइश पर। लता मंगेशकर, सोनू निगम की आवाजें, फिल्म वीर ज़ारा।

सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही।

और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है, ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां।

और दोस्तों अब मैं आपको छोड़े जा रही हूँ दो गानों के साथ, और ये इन दो गानों के साथ साथ पूरी होगी इंदौर से अजय साखरे और मुंबई से फिरोज सिगनपोरिया की पसंद। और अब दीजिए इजाज़त अपनी आरजे दोस्त अमिता को इसी वादे के साथ कि बहुत ही जल्द होगी हमारी और आपकी अगली मुलाकात, और हमारी अगली मुलाकात तक रखिए अपना और अपनों का अच्छी तरह से ध्यान। ठीक 8 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम रॉक विद द चॉक्स, सो कीप लिसनिंग FM Rainbow, musically yours.

Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

0: लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्तागंडी के CRI औद्योगिक पार्क

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारे

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण उत्तरी भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीटवेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000

करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को

0: 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनके नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: This is आकाशवाणी। In connection with the 90 years celebrations of Akashwani, we now bring you a special feature titled Western Beats on Akashwani Delhi through the prism of 90 years.
4: The acceptance and demand for Western music in India is an endorsement of the observations made by John Denver and Herbie Hancock. The late John Denver, celebrated country music artist, said once, "Music brings people together. No matter what language we speak, what color we are, music proves we are the same." And Herbie Hancock, jazz pianist and composer, said, "Music happens to be an art form that transcends language." The The Western music broadcasting on All India Radio began with the creator

आकाशवाणी एफ एम रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है, शुरू होता है रंगे महफिल। रात फिर अपनी नरमी के साथ उतर आई है जनाब, और आज की महफिल में एक अजीब सी उदासी भी है, वो अपने साथ लेकर आई है उर्दू अदब के एक बहुत रोशन नाम, डॉक्टर बशीर बद्र। आज हमारे दरमियान नहीं रहे, मगर उनके अल्फाज, उनका लहजा, उनकी शायरी हमेशा दिलों में जिंदा रहेगा। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार

0: शक्ति के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो, मैं हूँ आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। आज रंगे महफिल थोड़ा सा मुख्तसर है। कभी कभी कुछ शायर सिर्फ किताबों तक नहीं रहते, वो आदमी की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी लिखी हुई एक लाइन कभी मुस्कुराहट दे जाती है और कभी खामोशी में साथ निभाती है। कुछ अल्फाज तो वक्त के साथ पुराने नहीं होते बल्कि गहरे लगने लगते हैं। अच्छी शायरी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता ये भी महसूस हो रहा है कि अब शायद हमें जाना होगा। कोई बात नहीं, एक गज़ल सुनिए फिर लौट कर वापस आता हूँ।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: तो जनाब, आज की महफिल यहीं तक, और वक्त तो बिल्कुल होता जा रहा है, चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, हमें कहता है चलिए उठ जाइए और अगले प्रेजेंटर को हम देंगे इजाज़त यहाँ आने की, और इसी वादे के साथ जाएंगे कि बहुत जल्दी आपकी खिदमत में आए। जब तक तो ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर उन लोगों का जो आपका ख्याल रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान

0: पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दौरान श्री डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की और रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा सहित व्यापार सहयोग पर चर्चा की। दक्षिण अफ्रीका में धार्मिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के मंदिर और सामुदायिक भवन पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की घटना के बाद करीब 30 धार्मिक संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई संगठनों ने कहा कि पूजा स्थल शांति, प्रार्थना और सामुदायिक एकता के प्रतीक हैं। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के अध्यक्ष संजय गोविंद ने कहा कि लाउडियम और आसपास के क्षेत्रों में लोग पीढ़ियों से मिलजुल कर रहते आए हैं और ये एकता आगे भी कायम रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी तो सिर्फ आगाज़ है दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी इस खूबसूरत महफिल की बस शुरुआत भर हुई है और 12:11 हो चुके हैं और घड़ी की सुई ने इशारा कर दिया है कि बस अब वो महफिल, वो बज़्म सज जाए और आगे बढ़ती जाए, परवान हासिल करती जाए जिसका सभी को इंतज़ार रहता है। दिन

0: पिछला खत्म होकर अगला दिन शुरू होने के लिए। जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूं कि ये इस दिन का या हर दिन का पहला प्रोग्राम होता है, पहला शो होता है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर। और आपसे मिलने का, आपसे मुलाकात का जो हसीन वक्त हमने मुकर्रर किया हुआ है कैलेंडर बदलते ही, वो बहुत जल्दी दाखिल हो जाता है। समाचारों के ठीक बाद हम दाखिल होते हैं एक खूबसूरत नगमे के साथ और तमाम ऐसी खुशखबरियों के साथ, शुभकामनाओं के साथ जो आपके हमारे सभी के जीवन से हर पल से हर लम्हे से जुड़ी हैं। मैं कोशिश करता हूँ अपने हर प्रोग्राम को नायाब बनाने की और ये करने की कि भाई हमारे जो दोस्त हैं जो इस वक्त जागकर हमें सुन रहे हैं, बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, बहुत सारे अपनी परेशानियों को एक तरफ रखते हुए आप हमें सुन रहे हैं और ये बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत अच्छा लगता है। और आभार आप सभी का, बहुत एहतराम आप सभी का कि आप हमें सुनते हैं रात के इस वक्त भी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा श्रोता। और अब जब से ये ऐप न्यूज़ ऑन एयर का चलन शुरू हुआ है हमारी तरफ से, तब से तो देश और दुनिया में तमाम हमारे लिसनर्स बढ़े हैं, श्रोता हमें सुनते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और स्वागत इस कार्यक्रम में जिसे आप और हम कहते हैं जीरो आवर शो, जो कि आवर्स जीरो का शुरू होते ही आपके रेडियो सेट्स पर, आपके मोबाइल्स पर ऐप के जरिए दस्तक दे देता है। तो आप आ चुके हैं ये हमें पता चल रहा है आपके मैसेजेस देखकर, और गाना सुनते ही आपके जो मैसेजेस हैं उनकी भरमार शुरू हो गई है, पढ़ेंगे इत्मीनान से और मैं कोशिश करूंगा जवाब भी देने की। लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ इन्हीं फ्रिक्वेंसीज पर, इसी प्रोग्राम के साथ जिसका नाम एक बार फिर बता दूं जीरो आवर शो है। और जीरो आवर शो में आप सभी का एहतरामन शुक्रिया कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। मैं रजत आपका दोस्त, और लेकर आएंगे ऐसी कुछ खास खूबसूरत नगमे, खूबसूरत गाने जो आज भी आपके दिल में अमर हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुशी की, यादों की लौ जलाए रखते हैं। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत प्रोग्राम में।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती। सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: पर जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार।

विंध्याचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की।

अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दौरान श्री डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की और रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा सहित व्यापार सहयोग पर चर्चा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। दक्षिण अफ्रीका में धार्मिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली है। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के मंदिर और सामुदायिक भवन पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की घटना के बाद करीब 30 धार्मिक संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई संगठनों ने कहा कि पूजा स्थल शांति, प्रार्थना और सामुदायिक एकता के प्रतीक हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के युद्ध विराम विस्तार को लेकर समझौते के मसौदे पर सहमति बनी है। हालांकि इस समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान हार्मुज जल डमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए बिना किसी रोक टोक के खोल देगा और वहां बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को 30 दिनों के भीतर हटाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी आकाशवाणी
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो के साथ। 1:05 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुहानी रात मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: श्रेया घोषाल जी की आवाज में अगर तुम मिल जाओ। 1:11 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9:00

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक बजकर 27 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो के साथ। 1:37 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।

भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। ये कार्रवाई दक्षिणी ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया। इससे पहले अमेरिका ने होर्मुज जलडरमुर मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। वहीं ईरान ने भी अमरीकी हमलों की निंदा की और इसे युद्ध विराम उल्लंघन करार दिया। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 2:11 और प्रोग्राम का आगाज फिल्म जीना तेरी गली में से किया हमने और प्रोग्राम का नाम है बुलाए ना बने मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 आपने ट्यून किया हुआ है। इसके अलावा जो लोग हमारे साथ देश और दुनिया से जुड़े हैं वो है आकाशवाणी की ऐप के माध्यम से जिसे हम कहते हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप। बुलाए ना बने प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आभार। और आने वाले जो दिन की शुरुआत है उससे पहले कुछ खूबसूरत दिलकश और सदाबहार गाने आपके पेश नज़र कर दें, हमारी ये कोशिश रहती है क्योंकि आने वाला दिन फिर एक थकावट और नई चुनौतियां लेकर आता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ जो तरोताजगी आपको मिले वो आपके मेहनत के साथ चले और आपको आपकी मेहनत के अच्छे नतीजे मिले, अच्छे अंजाम हासिल हों और आप सभी का जो आने वाला दिन है वो बहुत ही मंगलमय और शुभकारी हो। इसी कोशिश को हम अंजाम तक पहुंचाते हैं अपने जरिए, अपने मार्फत, अपने तरीके के रास्ते, और हमारा तरीका है खूबसूरत दिल अजीज गाने और अपने दौर के खूबसूरत नगमे, बहुत ही दिलकश नगमे अपनी तरफ से लेके आने की कोशिश रहेगी आने वाले 40-45 मिनट में। तो प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए और फिर बताइए हमें कैसा लगा ये शो, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम। आप जुड़े हैं मेरे साथ बुलाए ना बने प्रोग्राम में आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप सभी का एक बार फिर से नमस्कार के साथ स्वागतम।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। यह कार्रवाई दक्षिण ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन

को नाकाम किया है। इससे पहले अमेरिका ने हुर्मुज जल डमरू मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी हमलों की निंदा की और इसे युद्ध विराम का उल्लंघन करार दिया। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल के साथ। 3:05 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज मेरे यानी अर्चित के साथ।

तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: बजकर 18 मिनट हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं मिडनाइट मेलोडीज।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते।

3:59 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। वे कर्नाटक के दावणगेरे स्थित यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थंगडी स्थित CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। वे केरलम के कोट्टायम में दीपिका मलयालम दैनिक के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज से शुरू हो रहे अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान शिलांग में एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। वे इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री मांडविया इस दौरान युवा कार्यक्रम और खेल अवसंरचना विकास तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे युवा कार्यक्रम विभाग के एक विचार विमर्श सत्र को भी संबोधित करेंगे। कल श्री मांडविया मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ राज्य की राजधानी में 132 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर को 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में भी देखा जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुस जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी।

0: 4:10 और ये हो चुका है भोर का अभिवादन शुरू। और भोर का अभिवादन, सुबह का अभिनंदन हम कैसे करते हैं, रोज इसी फ्रीक्वेंसी पर, इसी प्रोग्राम के जरिए जो बस आगाज ले चुका है इस खूबसूरत गाने के साथ, पंचमदा की आवाज के साथ। और प्रोग्राम का नाम है सारेगामा। सारेगामा की मनमोहक और पुरातन धुनों से जड़ित हमारा ये कार्यक्रम आपको अलग अलग मूड के गाने यहाँ सुनाने की कोशिश करता है। और कोशिश करते हैं कि इसके बाद जो वक्त शुरू होगा ना, जब पहली किरण सूरज की धरती पर पड़ेगी और बस हमें उठाएगी, जगाएगी, उसके बाद से हलचलें बस करवटें लेने लग जाती हैं, शुरुआत होने लग जाती है, वहाँ सारेगामा हमारी एक स्वस्थ शुरुआत को आगाज देता है। और कोशिश करते हैं कि हम उसी धुन को आगे तक लेकर चलें जो सारेगामा ने हमें दी है, जो ताजगी हमें देगी सारेगामा की 7 सुरों की, वो धुन, वो सादगी, वो ताजगी पूरे दिन हमारे साथ रहेगी। इसी कोशिश को फलीभूत करने के लिए लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं हम सब, आप और हम। और इस प्रोग्राम में भी मैं देख रहा हूँ मैसेजेस आने शुरू हो गए इस गाने के बाद ही। खैर, अभी गानों का सिलसिला शुरू करते हैं और प्रोग्राम को सिलसिला शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक बार फिर से अपनी परंपरा के अनुरूप चलते हुए सारेगामा आपको दिखाए सही मंजिल गीत संगीत की। अलग अलग दौर के गानों को शामिल करके मैं एक बार फिर से खूबसूरत और नज़ाकत और नफासत का पिटारा अपनी तरफ से प्रयास करके लाया हूँ आपके लिए। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत अभिवादन सारेगामा में आकाशवाणी रेनबो 102.6। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए तो आप जुड़ ही सकते हैं देश और दुनिया के हर हिस्से, हर कोने से आकाशवाणी FM रेनबो के प्रोग्राम सुनने के लिए। फिलहाल ये है दिन का 4th शो और सारेगामा का ये 1st शो आज के दिन का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।